FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के बैशाख माह की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 मई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

0: उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार।
2: सामान्य रूप से जीवन में प्रेरक तत्व होता है अहंकार का, गर्व का और अभिमान का। इस प्रेरणा के बल पर मनुष्य काफी दूर तक पहुंच सकता है, लेकिन हरेक के जीवन में कभी न कभी ऐसी घड़ी आती ही है जब मनुष्य अनुभव करता है कि ये सब व्यर्थ है। अभिमान के बल पर प्राप्त किया हुआ सब कुछ खोखला है, निःसत्व है। आसन ऊंचा होने से हृदय ऊंचा नहीं होता, केवल सिर ऊंचा करने से जीवन का उद्धार नहीं होता। एक भक्त ने अपना अनुभव व्यक्त किया, मैं पापी हूँ, पतित हूँ, भगवान मेरा कब और कैसे उद्धार करेंगे। इस चिंता से व्याकुल होकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। इतने में कहीं से अहंकार जागृत हुआ और कहने लगा, धन्य हूँ मैं, मेरा जैसा पश्चाताप शायद ही किसी को होता होगा। इतने पश्चाताप के बाद भी अगर भगवत प्राप्ति न हुई तो आध्यात्म शास्त्र ही झूठा कहना पड़ेगा। अपने पाप को धो डालने की मेरी ये कोशिश क्या कम है? जिस तरह तेजाब में गहना डाल देने पर उसके अंदर का कूड़ा करकट और हीन अंश जल जाता है, उसी प्रकार मेरे पश्चाताप के आंसुओं में महापाप जलकर भस्म हो जाएंगे। किंतु इस पश्चाताप से अहंकार वृद्धि ही हुई। पापों का निर्मूल करना आसान था, लेकिन इस अहंकार का निर्मूलन कैसे किया जाए कुछ समझ नहीं आता। जैसे किसी उत्तम फल को कीड़ा लगता है और परिपक्व होने के पूर्व ही वो सड़ जाता है, उसी प्रकार मेरी सारी साधना इस अहंकार के कारण सड़ रही है। व्यवहारिक जीवन में हरेक इंसान कदम कदम पर सोचता है कि मेरे कर्म दुनिया को कैसे दिखेंगे। हरेक इसी चिंता में होता है कि कोई हमें हीन या कायर न माने। इसी को इज्जत आबरू की परवाह कहते हैं। बहुत बार मनुष्य केवल इस इज्जत आबरू की परवाह से ही भलाई करता है, लेकिन एकांत में जब दुनिया की नजर उस पर नहीं होती, वो ओछे कर्म भी कर जाता है। लेकिन क्योंकि उसकी क्षुद्रता को कोई जानता नहीं, इसलिए वो मान बैठता है कि मेरा मान सम्मान पहले की ही तरह बना हुआ है और बेदाग है। वास्तविकता ये है कि जिस घड़ी इंसान अपनी नेकी छोड़ता है, उसी घड़ी वो अपनी असली इज्जत भी खो बैठता है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को कैसा लगेगा, इससे कहीं ज़्यादा महत्व का विचार ये है कि मैं अपने को क्या कहूँगा या मेरे मन को ये कैसा लगेगा। ये सही है कि दुनिया में सम्मान से रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा आग्रह इसी बात का होना चाहिए कि अपने सामने अपनी आबरू टिकी रहे। अंग्रेजी में जिसे सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, उसका सच्चा अर्थ यही होता है कि अपने सामने अपनी इज्जत कायम रहे। लेकिन अक्सर लोग जब सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करते हैं, तो उनका मतलब सोशल रेस्पेक्ट यानी सामाजिक प्रतिष्ठा से ही होता है। सत्पुरुष सामाजिक प्रतिष्ठा को महत्व नहीं देते, उन्हें आत्म प्रतिष्ठा की ही चिंता होती है।
3: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार विचार बिंदु में ये थे आज के विचार। और अब आइए सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ आरंभ करते हैं आज की आराधना।

जग जननी माँ के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाएं, माँ की पावन महिमा गाकर मन का दीप जलाएं। आइए आराधना की इस पवित्र बेला पर माँ जगदम्बा का स्मरण करते हुए शुभारंभ करते हैं।

जय संतोषी माँ भवानी, सुख समृद्धि की दाता, आपके चरणों में है मैया हर भक्त का नाता।

सीता राम का नाम है प्यारा, हर मन को सुख देता। भक्ति की निर्मल धारा बन जीवन पथ को संवारता। आइए मर्यादा और प्रेम की ज्योति से जग को आलोकित करने वाले प्रभु श्री सीताराम का स्मरण करें।

ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरणों में झुक जाए, आपकी भक्ति की मधुर धारा हम सभी के जीवन में अमृत बरसाए।

सांवली सूरत मोहनी मूरत, मन को हर्षाए मुरली की मधुरतान सुन हर दिल झूम जाए। आइए हम सब मिलकर नंदलाल के चरणों में प्रेम का दीप जलाएं।

आराधना कार्यक्रम में आज आपने सुने लता मंगेशकर, साधना सरगम, जीवन चंद, नितिन मुकेश और हरिओम शरण के गाए भक्ति गीत। इसी के साथ ही आज का आराधना कार्यक्रम संपन्न हुआ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है आज की बात।

नमस्कार श्रोताओं, आज की बात के अंक के साथ मैं हूं भारती जोशी। आज है 8 मई। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आइए जानते हैं आज का ये दिन देश दुनिया के इतिहास में क्यों है खास। श्रोताओं, 8 मई 1945, ये वो दिन था जब दुनिया ने एक लंबी और भयावह रात के बाद एक नई सुबह देखी। इसी दिन विक्ट्री इन यूरोप डे मनाया गया, जब नाजी जर्मन के मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और यूरोप में वर्ल्ड वॉर टू का अंत हुआ। करीब 6 साल तक चले इस युद्ध ने दुनिया को बुरी तरह झकझोर दिया था, लेकिन 8 मई का दिन उम्मीद लेकर आया। ये दिन हमें सिखाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दिन उजाला ज़रूर आता है। श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 8 मई सन 1886 में एक साधारण से प्रयोग ने इतिहास रच दिया। अमेरिका के फार्मेसिस्ट जॉन स्थित पैम्बर्टन ने इसी दिन एक पेय तैयार किया जिसे आज हम कोका कोला के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, शुरुआत में ये एक औषधि के रूप में बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय बन गया। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1794 को विज्ञान जगत ने एक महान प्रतिभा एंटोनिए लेवोसियर को खो दिया, जिन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान

का जनक कहा जाता है, और उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया जो आज भी विज्ञान की नींव है। श्रोताओं, सन 1828 में आज ही के दिन मानव सेवा के कार्यों के लिए पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता जीन हेनरी ड्यूनांट का जन्म हुआ था। वो रेडक्रॉस के दूरदर्शी प्रमोटर और सह संस्थापक थे। सन 1901 में उन्हें फ्रेडरिक पासी के साथ मिलकर पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। सन 1926 में आज ही के दिन प्रसिद्ध इतिहासकार तपन राय चौधरी का जन्म हुआ था। श्रोताओं, वो एक भारतीय इतिहासकार थे जो ब्रिटिश भारतीय इतिहास, भारतीय आर्थिक इतिहास और बंगाल के इतिहास में विशेषज्ञता रखते थे। 8 मई सन 1962 में आज ही के दिन रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था रविंद्र भारती अधिनियम के तहत कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष में कोलकाता स्थित उनके आवासीय घर में। इसका उद्देश्य विशेष रूप से संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना था। श्रोताओं, 8 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये दिन समर्पित है हेनरी ड्यूनांट को, जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट मूवमेंट के संस्थापक थे, और ये दिन उनके जन्मदिन पर हर साल मनाया जाता है। ये दिन उन सभी लोगों को समर्पित है जो मानवता की सेवा में लगे हैं, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या प्राकृतिक आपदा। और श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 8 मई सन 1929 को भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में एक जमींदार रामदेव राय के घर हुआ था। वो सेनिया और बनारस घरानों की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज जयंती है ध्रुपद गायन उस्ताद जिया फरुद्दीन डागर की। तो श्रोताओं, ये थी 8 मई का इतिहास। कल फिर मिलेंगे एक नई तारीख और नए अंक के साथ। तब तक के लिए भारती जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं, आज का ये विशेष अंक समर्पित है मानवता, सेवा और करुणा के उस प्रतीक को जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को नई उम्मीद दी है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। हर वर्ष श्रोताओं 8 मई को मनाया जाने वाला ये दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक भावना है, एक ऐसा संदेश जो हमें ये याद दिलाता है कि जब दुनिया कठिनाइयों से जूझ रही होती है तब कुछ लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। श्रोताओं, इस महान संगठन की नींव रखने वाले व्यक्ति थे हेनरी ट्यूनेंट, जिनका जन्म 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। सन 1859 में इटली में हुई बैटल ऑफ सोलपेरिनो ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस युद्ध में हजारों सैनिक घायल पड़े थे लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब हेनरी ड्यूनेंट ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनकी सेवा की, बिना ये देखे कि वो किस देश के हैं। और इस अनुभव से प्रभावित होकर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, अ मेमोरी ऑफ सोलपेरिनो। इस पुस्तक में उन्होंने एक ऐसे संगठन की कल्पना की जो युद्ध और आपदा के समय सभी की मदद करे। और श्रोताओं, इसी सोच के परिणाम स्वरूप सन 1863 में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना हुई और धीरे धीरे रेड क्रॉस का ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया। आज ये संगठन 190 से अधिक देशों में सक्रिय है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय नेटवर्क माना जाता है। श्रोताओं, रेड क्रॉस के साथ साथ रेड क्रेसेंट और रेड क्रिस्टल जैसे प्रतीक भी विभिन्न देशों में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इन सभी का उद्देश्य एक ही है, वो है मानवता की सेवा। श्रोताओं, रेड क्रॉस 7 मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो इसके हर कार्य को आधार है। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता, यानी पूरी दुनिया में समान भावना। श्रोताओं, रेड क्रॉस का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्राकृतिक आपदाओं के समय रेड क्रॉस सबसे पहले राहत कार्यों में जुट जाता है। ये प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, दवाइयाँ और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराता है। युद्ध के समय रेड क्रॉस घायल सैनिकों और नागरिकों की मदद करता है। श्रोताओं, भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। ये संस्था देश के हर राज्य और जिले में सक्रिय है। ये संगठन केवल संकट के समय ही नहीं बल्कि लोगों को तैयार करने, जागरूक करने और

सशक्त बनाने का कार्य भी करता है। श्रोताओं, कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन रेड क्रॉस हमें ये सिखाता है कि छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एक स्वयंसेवक का एक कदम किसी के जीवन में उम्मीद की किरण बन सकता है। तो आइए आज इस विश्व रेड क्रॉस दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, रक्तदान जैसे महान कार्य में भाग लेंगे और समाज में प्रेम, सहयोग और करुणा को बढ़ावा देंगे। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में, तत्पश्चात हिंदी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ए FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7:10 पर समय रहेगा श्री रामचरितमानस गान पाठ का। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का आनंद आप उठाएंगे आज प्रातः 11:30 पर लोकसुर कार्यक्रम में, दोपहर 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत में और हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम के तहत। प्रातः 7:30 पर आज हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे मानवता को जीवित रखना है विषय पर डॉक्टर जगदीश चंद्र दुर्गापाल से संजय जोशी की बातचीत। गांधी चर्चा आप सुनेंगे प्रातः 7:50 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा आज प्रातः 8:30 पर। गीत निर्झर फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे आज प्रातः 9:05 पर। सबरंग कार्यक्रम का समय रहेगा आज प्रातः 10:05 पर और सुरबहार आप सुनेंगे आज प्रातः 10:35 पर। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा सुबह 11 बजे। मेरी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 12 बजे। महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर संसार दोपहर 12:30 पर, जिसमें आज चर्चा के विषय होंगे रेड क्रॉस दिवस और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म। साथ ही आप सुनेंगी उम्मीद सहायता और मानवता का प्रतीक रेड क्रॉस विषय पर श्री मनोज सनवाल प्रदेश उपाध्यक्ष रेड क्रॉस अल्मोड़ा से हेमलता नयाल की बातचीत। सुगम संगीत का आनंद आप उठाएंगे आज दोपहर 1:15 पर और रात्रि 10 बजे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा आज दोपहर 1:30 पर। किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती की बातें में आज दोपहर 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर की उपयोगिता विषय पर डॉक्टर दीबाकर महंती की वार्ता। एक ही फनकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 2:45 पर और सदाबहार फिल्मी गीतों का समय रहेगा अपराहन 3 बजे। युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में आज शाम 5:15 पर आज की बात का विषय होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। साथ ही आप सुनेंगे विश्व शांति में रेड क्रॉस की भूमिका पर वार्ता, वार्ताकार होंगी काव्या गुरानी। उत्तरायण कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45 पर। भक्ति संगीत में शाम 6:41 पर आज आप आनंद लेंगे सुधा मल्होत्रा और भूपेंद्र सिंह के गाए भक्ति गीतों का। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम जगत में आज शाम 7 बजे आज की बातें होंगी दुधारू पशुपालन से लाभ विषय पर और चर्चा का विषय होगा मत्स्य पालन से रोजगार संभावनाएं। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे आज शाम 7:40 पर, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में और रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपके अनुरोध पर और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत के अंतर्गत। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। तो श्रोताओं ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान पाठ का 87वां भाग।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वे जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी के विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसने तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से अधिक हुई। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। और हरिद्वार जिले में संचालित 23 मदरसों में पीएम पोषण योजना की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने स्वीकृत धनराशि का उपयोग तय मानकों के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जनहित के कार्यों में तेजी लाई जा सके। स्वीकृत योजनाओं में विभिन्न जिलों में भवन निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार, पुलिस और होमगार्ड विभाग के कार्यों के साथ ही शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा RTE अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए भी धनराशि जारी की गई है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तीर्थ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। चारधाम यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। वहीं अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं और लगभग 9 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पंजीकरण और GMVN गेस्ट हाउसों की लगातार बढ़ रही बुकिंग को देखते हुए यात्रा में इस बार अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने यात्रियों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य जांच कराने, मौसम को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े और रेनकोट साथ रखने तथा यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की है। उधर केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा देर रात केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग, मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
1: जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। श्रद्धालुओं ने दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं पर संतोष जताया। जिलाधिकारी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, दर्शन लाइन, विद्युत व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और साफ सफाई की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा अवधि के दौरान सभी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंद्रियाल।
0: चंपावत के कथित नाबालिग दुष्कर्म मामले में पुलिस जांच में साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार बदले की भावना से एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था। मामले में मिली शिकायत के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर SIT गठित की गई। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण, काउंसलिंग और न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। पुलिस ने CCTV फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच में पाया कि नामजद तीनों

0: व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, वहीं मेडिकल परीक्षण में भी जबरदस्ती या संघर्ष के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस के अनुसार जांच में कुछ लोगों के बीच लगातार संपर्क के तथ्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश माना जा रहा है। मामले में डिजिटल और फॉरेंसिक जाँच अभी जारी है। चंपावत के कथित नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण में एसआईटी जांच के बाद सामने आए तथ्यों पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रंजिश के चलते एक नाबालिग को बहला फुसलाकर पूरे घटनाक्रम में शामिल करना गंभीर मामला है और ये समाज तथा कानून दोनों के खिलाफ अपराध है। अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिला आयोग महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करता है, लेकिन कानून के दुरुपयोग को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
1: पता चला जैसे ही पूरी जांच और पड़ताल के बाद मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता चला कि उस बेटी के साथ कुछ भी नहीं, ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। ये किसी व्यक्ति की पूरी तरह से साजिश रची गई थी और उस साजिश के तहत उस बेटी को मोहरा बनाया गया। तो निश्चित ही महिला आयोग ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को कठोर कारावास होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। इसका
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
3: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है।
0: हरिद्वार जिले में संचालित मदरसों में पीएम पोषण योजना की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में 23 मदरसों में मिड डे मील व्यवस्था और छात्र उपस्थिति से जुड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं, जबकि छात्र संख्या में अनियमितता मिलने पर 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना का संचालन बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इन मदरसों के मार्च और अप्रैल माह के भुगतान पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी मदरसों की विस्तृत जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ मदरसों में उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के बच्चों का दाखिला कराया गया है। प्रशासन अब इन बच्चों के सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी जुटा रहा है। और अब एक नज़र समाचार पत्र की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने पर अमर उजाला सेना के हवाले से लिखता है, आतंकियों की कोई पनाहगाह सुरक्षित नहीं। नवोदय टाइम्स की खबर है, LOC पर कोई आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं। मुख्यमंत्री के पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों व मत्स्य पालकों के साथ किए संवाद को सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, पशुपालकों को धामी का मंत्र, पहाड़ का दूध बनेगा ग्लोबल ब्रांड। इसी पर नवोदय टाइम्स मुख्यमंत्री धामी के हवाले से लिखता है, पशुपालकों की आय बढ़ाने को सरकार संकल्पबद्ध। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से

0: अधिक हुई। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए और हरिद्वार जिले में संचालित 23 मदरसों में पीएम पोषण योजना की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं, मानवता को जीवित रखना है विषय पर डॉक्टर जगदीश चंद्र दुर्गापाल से संजय जोशी की भेंटवार्ता।
2: श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अल्मोड़ा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर जेसी दुर्गापाल जी को, और हम इनसे बातचीत करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों के संबंध में, उसकी संरचना के संबंध में, और किस तरीके से ये युद्ध और शांति दोनों के समय कार्य करती है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, बात यहीं से शुरू करते हैं कि पहले रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस मकसद से हुई है, किन्होंने इनकी स्थापना करी?
3: जी धन्यवाद। नोबेल पुरस्कार प्राप्त हेनरी डुनंट जी का जो जन्मदिन है वो 8 मई को धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। उन्हीं की याद में रेड क्रॉस दिवस के रूप में हम लोग भी उनका जन्मदिन अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाएंगे। हेनरी डुनंट जी का जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में और उनके मन में एक पीड़ा आई थी, और फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में सदी पूर्व युद्ध हुआ था। उस युद्ध में काफी लोग घायल हो गए थे, काफी लोग मारे गए थे। तो ऐसे में स्विट्जरलैंड निवासी हेनरी डुनंट वहां से गुजर रहे थे, तो उनके मन में एक पीड़ा की अनुभूति हुई और वहीं से रेड क्रॉस का जन्म हुआ। तो उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और जो घायल थे अत्यधिक उनको अस्पताल पहुंचाया, और जो मर चुके थे उनकी अंत्येष्टि की। और यही जो दर्द था ये बाद में जाकर 160 देशों में फैला और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिली और हेनरी डुनंट जी को बाद में नोबेल पुरस्कार मिला था।
2: देखिए, हम सभी जानते हैं कि आजकल युद्ध की विभीषिका से आधे से ज्यादा संसार ग्रस्त है, देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं, तो रेड क्रॉस की अपनी भूमिका वहां भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं कि इसके मोटो को लेकर, जैसे इस बार की थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, मानवता को जिंदा रखना है, तो इसी मोटो को लेकर के आप लोग रेड क्रॉस सोसाइटी हम समझने काम करेगी इस थीम के साथ, इस वर्ष इन्होंने काम करना है, तो क्या क्या कार्य होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के?
3: रेड क्रॉस सोसाइटी के दो तरह के कार्य होते हैं, एक तो युद्ध काल में और एक शांति काल में। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि आपने कहा कि युद्ध होता है, या राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, तो युद्ध काल में हम लोग जाकर रोगियों की देखभाल करते हैं, रोगियों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं और प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, ब्लड डोनेट करवाते हैं और जरूरतमंदों को रक्त पहुंचाते हैं। ये तो रहा युद्ध काल में। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम दलगत राजनीति से हटकर, आज अगर हमारा मित्र देश को भी अगर कोई तकलीफ होती है तो वहां पर भी हम जाते हैं, और अगर हमारा दुश्मन देश को भी युद्ध में कहीं पर कोई तकलीफें होती हैं, भुखमरी होती है, आगजनी होती है, हम वहां पर भी मदद करते हैं। यह परोपकार, करुणा और एकता, यही इसका मोटो है।
2: तो युद्ध के समय हम सभी जानते हैं कैसा वहां पर वातावरण रहता है, एक शब्द आता है वॉश, यानी कि वाटर सैनिटेशन हाइजीन, उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है अगर देखा जाए तो। जब इस तरह का युद्ध होता है और समस्या सब तरह की आती है और वर्तमान में युद्ध चल ही रहे हैं, तो बात यह है कि रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ पर अगर कार्य करेगी तो कैसे करेगी और कैसे वो इतना पैसा जुटा पाती है कि जगह जगह जाकर के कार्य कर सके?
3: मेंबरशिप बनाते हैं और आज भी हमारे पास अल्मोड़ा में अपने रेड क्रॉस के पास अच्छा पैसा है, और हम जल्दी ही एक रेड क्रॉस भवन का भी निर्माण करेंगे। हम सदस्य बनाते हैं लाइफ मेंबर, जिसका हम 1,000 रुपया लेते हैं, और पैट्रन का 25,000 रुपया, और जो एनुअल मेंबर बनना चाहता है उसका 100 रुपया शुल्क लेते हैं, वह भारत सरकार तक हम पहुंचाते हैं। उसी पैसे को हम प्रयोग करके, जो भारत सरकार को हम भेजते हैं या कुछ पैसा हम अपने पास रखते हैं, उसी से हम अपने संसाधनों से, चाहे वाटर का हम प्यूरिफायर खरीदें या अन्य सामान हम खरीदते हैं, जैसे कि हम, एक तो हमने बताया कि युद्ध काल में हम काम करते हैं, एक शांति के वक्त हम भी हम काम करते हैं। शांति के वक्त में जैसा आंतरिक हमारे देश में कभी बाढ़ आ गई तो हम शुद्ध जल उनको उपलब्ध करवाते हैं या भोजन उपलब्ध कराते हैं, और भूकंप आ गया तो ऐसे वक्त में भी हम उन तक जो भी जीवन की आवश्यक आवश्यकताएं हैं।

0: नहीं, 2 महीने के लिए जब तक सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती है हम उपलब्ध कराते हैं। बरसात के मौसम में है, लोगों के घर में करक पानी घर में चूता है, ऐसे वक्त में हम तिरपाल है और बर्तन है, भोजन सामग्री है, यहाँ तक कि हमने कोशिश की है कि हम टिन सेट भी उनको बनाकर दें। और शीतकाल में हम रात को निकल जाते हैं एक गाड़ी में कंबल आदि लेकर, और जरूरतमंदों को हम कंबल भी वितरित करते हैं जिससे कि ठंडे से कोई मानव जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे।
1: बेसिकली देखा जाए तो मानवता की सेवा
0: जी
1: भाव से ही कार्य करती है रेडक्रॉस सोसाइटी। अगर मैं अल्मोड़ा की बात करूं तो यहाँ पर जो आपकी रेडक्रॉस सोसाइटी है उसकी संरचना किस प्रकार की है?
0: देखिए, यूं तो हम अगर थोड़ी सी और पीछे जाएं तो और अच्छा हम कह सकते हैं, आम जन को समझा सकते हैं। इसके जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है देश में, और प्रदेशों में राज्यपाल होते हैं
1: जी।
0: और जिले में इसका जिलाधिकारी होता है, और जिलाधिकारी भी अवैतनिक होते हैं इसमें, और जो हम लोग हैं वो भी अवैतनिक होते हैं। और उसके बाद जिलाधिकारी एक कमेटी गठन करते हैं, उसमें हम लोग अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव का चयन करते हैं। उसके बाद फिर सब कमेटियां गठित होती हैं कि जो कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। हमने एक यूथ रेड क्रॉस का भी गठन किया है जैसे कि, और महिला संगठन का भी हमने चयन किया है, और चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने इसमें अलग सा एक विंग बनाया हुआ है। तो विभिन्न क्षेत्रों में हमने काम करने के लिए जिससे कि काम में सुविधा हो और हम आसानी से जरूरतमंदों तक पहुंच सकें, ये हमारी मंशा है।
1: इन कार्यों के लिए आपको वॉलंटियर्स की बड़ी अच्छी खासी जरूरत पड़ती होगी, तो वॉलंटियर्स को कैसे आप जोड़ पाते हैं?
0: जी, हमारा यही कर्तव्य होता है कि हम यूं तो मेंबर्स को ही अधिक से अधिक लोगों को मेंबरशिप दें, और मेंबरशिप जो अगर आजीवन नहीं ले सकते हैं वो एनुअल मेंबरशिप ले सकें और वो आ जाएं। और जरूरी नहीं है कि मेंबर ही इसमें काम कर सकें। हमने एक याद आता है मुझको, जो किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो समझे उसे भगवान कहते हैं। और तुलसी ने भी अपने काव्य में लिखा है, परहित धर्म सरस नहीं भाई। तो हमें लोगों का भला करने के लिए, मैं समझता हूँ मैं तो अकेला ही चला था, न जाने कारवां कब जुड़ गया। तो लोग आ जाते हैं, और हम कोशिश हमारी फिर भी है कि हम रोड साइडों में जितने भी जहां जहां पर एक्सीडेंटल क्षेत्र हैं हम वहां के ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित करें फर्स्ट एड में, और हम सभासदों को हम प्रशिक्षित करें, और हमारे जिलाधिकारी से इस विषय में वार्ता हुई है, और हम यहां तक कि टैक्सी यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं, इनको भी हम फर्स्ट एड, क्योंकि मानव जीवन को बचाना ही परोपकार का कर्तव्य है। हम अगर कहीं पर दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले वहां पर या तो ड्राइवर रहता है या लोकल जनसंख्या रहती है, तो लोकल में आप ग्राम प्रधान हो गया, अगर ड्राइवर उस दुर्घटना में घायल नहीं होता है तो वह भी फर्स्ट एड के माध्यम से लोगों की मदद कर सकता है।
1: आपने कहा फर्स्ट एड के माध्यम से मदद कर सकता है। अब इसके लिए जैसे हम अगर अल्मोड़ा को ही देख रहे हैं, भौगोलिक स्थिति देखें, काफी दूरस्थ क्षेत्र में रिमोट एरिया भी है यहाँ पर, तो क्या ऐसा आप लोग प्रयासरत नहीं है कि एक रेड क्रॉस सोसाइटी आपके अल्मोड़ा में तो है ही, उन क्षेत्रों में भी इस तरह के छोटे छोटे आप यूनिट्स खोल सके?
0: हाँ, इस पर भी हमारी बात पहले से चली है कि हम ब्लॉक स्तर पर भी और ग्राम स्तर पर भी इस पर काम करें, लेकिन चूंकि अभी हमारी इसका जो रेड क्रॉस का इतना बड़ा अधिक एक्सपेंशन नहीं हो पाया है, हम आपके रेडियो के माध्यम से ही हमारे श्रोतागण सुनते हैं हमें, तो उनमें ऊर्जा मिलती है, वो सोचते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग मेंबर बनते हैं, लेकिन हम ग्रामीण स्तर तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, ये हमारी कमी है, लेकिन हमें सुधार करने की आवश्यकता होती है।
1: तो इस बार जो रेड क्रॉस बनाया जा रहा है तो वहां पर किस तरह के कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं?
0: जो कि आपकी थीम आप बताई है, इसी को आधार लेते हुए हम एक रेड क्रॉस, जिससे कि हमें ये लग सके कि इसका जन्मदाता कौन था, आखिर ऐसे प्रेरक लोग हमारे बीच में समय समय पर आते रहते हैं, पैदा होते हैं, तो उनसे हम प्रेरणा लें, हम मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने समाज में चाहे नशा पर काम किया हो, चाहे चिकित्सा में अच्छा काम किया हो, चाहे नर्सिंग में अच्छा काम किया हो, हम उन लोगों को पुरस्कृत भी करेंगे। या मैं ये कहता हूँ कि एक इसका एक अभिन्न अंग और है, ब्लड डोनेशन, रक्तदान महादान जिसको भी कहा गया है। राजा शिवी ने तो अपने अंग अंग दान दे दिए थे, ऐसी प्रकार से दधीची ने अपने अंग दान दे दी, हड्डियां दान दे दी थी, तो इसी प्रकार से लोग रक्तदान के लिए भी बहुत अच्छा हमारा अल्मोड़ा में काम चल रहा है, और हम समय समय पर शिविर भी लगाते हैं, और दूर दराज में जैसा कि आपने कहा दूर दराज के लिए क्या करते हैं, मैं खुद पेटसाल के अस्पताल में जाता हूँ, वहां पर मैं 2-3 बार ब्लड डोनेशन करवा चुका हूं, और बड़ी भारी मात्रा में, उससे ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लड से भी हमारे शहरी क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए हैं और होते रहेंगे, हम ये काम गांव-गांव स्तर तक भी ले जाएंगे।
1: जी, तो इस बार भी ब्लड डोनेशन का कैंप लगेगा?
0: जी हाँ, इस बार ब्लड डोनेशन का कैंप लगेगा, लेकिन ब्लड डोनेशन का कैंप के

0: लिए हम कोई दिन निश्चित नहीं करते हैं।
1: अच्छा।
0: और हम स्कूलों में बैंकों के सहायता से और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी ब्लड डोनेट करते हैं, और स्वयं भी कुछ लोग जो जागरूक लोग होते हैं, मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा, जिनका जन्म दिवस है, जिनका विवाह का दिवस आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हमारे वहाँ आते हैं कि हम विवाह उत्सव में केक नहीं काटेंगे, कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, मैं आज और मेरी पत्नी जाकर ब्लड डोनेट करेगी, मेरा जन्मदिन आज ब्लड डोनेशन से ही शुरू होगा, क्योंकि ब्लड जो है हमारा अल्मोड़ा में काफ़ी इसमें अच्छा काम हो रहा, ब्लड सेपरेटर आ चुके हैं और बेस अस्पताल में, तो एक व्यक्ति 3 लोगों की जान बचा सकता है ब्लड डोनेट करके, और वो रेड क्रॉस की एक थीम है, एक सोच,
1: आपने कहा रेड क्रॉस की एक सोच है जिसमें ब्लड डोनेशन इसका एक आवश्यक पार्ट है हम कहेंगे, और कभी भी तब इसका आप लोग जब चाहते हैं तो एक कैंप इसका ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, लेकिन आज हम ये कहेंगे रेड क्रॉस डे के दिन पर्टिकुलर ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, इस बात की
0: ये अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार की थीम कुछ बदल के आई हुई है, और लेकिन अक्सरतः हम इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं करते हैं कि ब्लड डोनेट करना है हमें, लेकिन हमें काफी स्वयंसेवी संस्थाएं आ जाती हैं और लोग आ जाते हैं कि हमारा ब्लड लीजिए, हम भी आज इस पुनीत कार्य के भागीदार होना चाहते हैं।
1: जी, आपने पब्लिक को जोड़ने का प्रयास किया, बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया, वॉलंटियर्स को जोड़, तब एक टीम बन पाती है, तब कुछ हमें लगता है कि कार्य हो पाता है।
0: स्कूलों में भी रेड क्रॉस की शाखाएं हमने खोल दी है हर स्कूलों पर, स्तर पर भी, और बच्चे अपना अंशदान भी रेड क्रॉस में देते हैं।
1: जी, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जितना कुछ अमाउंट आप लोगों के पास आता है उससे आपकी संस्था जो है लोगों की भलाई के लिए कार्य कर पाती है, हम ये कहेंगे।
0: जी, और हम ही नहीं, हमारे हमें कुछ फिर सहायता केंद्र से भी मिलती है, प्रदेश से भी मिलती है।
1: अच्छा।
0: और इसका निशान ही जो सिंबल है वो रेड का है, तो ये रेड का जो सिंबल है वो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता दी है जिनेवा ने, और WHO इसको गवर्न करता है।
1: जी, तो एक बहुत अच्छा समाज सेवा का कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी करती आ रही है। आज के इस दिवस पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे एक आदर्श मानववादी हेनरी ड्यूनॉट जी ने अपनी वसीयत में लिखा था, जब वो मर चुके तो उससे पहले वसीयत में लिखा था, मुझे न राज्य की कामना है, न मुझे स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की इच्छा है, मेरी कामना दुखी मानवता को पीड़ा से दूर करना है। यही कि आज के दिन मैं रेड क्रॉस के माध्यम से आम जन को यह संदेश देना चाहता
1: हूँ। डॉक्टर दुर्गापाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को आपने रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों के बारे में एक जानकारी दी। हम समझते हैं आपकी बातों से सुनकर के लोग प्रोत्साहित भी होंगे, और कुछ जैसा कोई अगर कोई रेड क्रॉस ज्वाइन करना चाहता है तो वो जरूर आगे आएगा,
0: जरूर हमसे संपर्क करेगा और मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ेगा।
1: आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हिंदी कार्यक्रम में अभी आपने सुनी मानवता को जीवित रखना है विषय पर डॉक्टर जगदीश चंद्र दुर्गापाल से संजय जोशी की भेंट वार्ता। इसी के साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: मार्केट के बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो?
1: पीछे
2: मार्केट ट्रेंड
1: सुनने में आएगी,
3: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो।
2: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
2: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो।
5: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
6: सॉरी,
7: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है।
6: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
7: मतलब
6: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से

0: पढ़ें।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा।

0: और अब प्रस्तुत हैं गांधी जी के विचार।
1: अपरिग्रह को अस्तेय से संबंधित समझना चाहिए। वास्तव में चुराया हुआ न होने पर भी अनावश्यक संग्रह चोरी का समाल हो जाता है। परिग्रह का अर्थ है संचय या इकट्ठा करना। सत्य शोधक अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता, परमात्मा परिग्रह नहीं कर सकता। वह अपनी आवश्यक वस्तु रोज की रोज पैदा करता है। अतः यदि हमारा उस पर विश्वास है तो हमें समझना चाहिए कि वह हमें आवश्यक चीजें रोज की रोज देता है और देगा। रोज के काम भर का रोज पैदा करने के ईश्वरीय नियम को हम नहीं जानते अथवा जानते हुए भी पालते नहीं हैं। अतः जगत में विषमता और उससे होने वाले दुख भोगते हैं। धनी के घर उसके लिए अनावश्यक चीजें भरी रहती हैं, मारी मारी फिरती हैं, खराब होती रहती हैं। दूसरी ओर उनके अभाव में करोड़ों मनुष्य भटकते फिरते हैं, भूखों मरते हैं और जाड़ों में ठिठुरते हैं। यदि सब लोग अपनी आवश्यकता भर को ही संग्रह करें तो किसी को न तंगी हो और सबको संतोष रहे। आज तो दोनों ही तंगी अनुभव करते हैं। करोड़पति अरबपति होने को छटपटाता है

0: उसे संतोष नहीं रहता। कंगाल करोड़पति होना चाहता है। उसे पेट भरने को ही पाकर संतोष होना दिखाई नहीं देता, परंतु कंगाल का पेट भर पाने का अधिकार है और समाज का धर्म है कि उसे उतना प्राप्त करा दे। अतः उसके और अपने संतोष के लिए शुरुआत धनी को करनी चाहिए। वह अपना अत्यंत परिग्रह त्याग दे तो दरिद्र के काम भर को सहज में मिल जाए और दोनों पक्ष संतोष का सबक सीखें। आदर्श पूर्ण अपरिग्रह तो उसी का कहा जाएगा जो मन से कर्म से दिगंबर है, यहाँ तक कि वह पक्षी की भांति बिना घर के बिना वस्त्रों के और बिना अन्न के विचरण करता है। अन्न तो उसे रोज की जरूरत को भगवान देता रहेगा। इस अवधूत स्थिति को तो बिरले ही पहुंच सकते हैं। हम मामूली दर्जे के सत्याग्रह के जिज्ञासुओं को तो चाहिए कि आदर्श को ध्यान में रखकर नित्य अपने परिग्रह की जांच करते रहें और जहां तक बने उसे घटाते रहें। सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि विचार और इच्छा पूर्वक उसका घटाना है। परिग्रह घटाते जाने से सच्चा सुख और सच्चा संतोष बढ़ता जाता है, सेवा शक्ति बढ़ती है। इस दृष्टि से विचारने और बरतने पर हमें मालूम होगा कि हम लोग बहुत सा संग्रह ऐसा करते हैं कि जिसकी आवश्यकता सिद्ध नहीं कर सकते, और ऐसे अनावश्यक परिग्रह से पड़ोसी को चोरी करने के लालच में फंसाते हैं। अभ्यास से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को घटा सकता है और ज्यों ज्यों घटाता जाता है वह सुखी शांत और सब तरह से आरोग्यवान होता जाता है। केवल सत्य की आत्मा की दृष्टि से विचारिए तो शरीर भी परिग्रह है। भोग की इच्छा के कारण हमने शरीर का आवरण ले लिया और उसे कायम रखा है। भोग इच्छा के अत्यंत क्षीण हो जाने पर शरीर की जरूरत नहीं रह जाती। सर्वव्यापक आत्मा शरीर रूपी पिंजड़े में कैसे बंद रह सकती है? ये पिंजड़ा बनाए रखने के लिए अनर्थ कैसे कर सकता है, दूसरे को कैसे मार सकता है? यूं विचार करते हुए हम ऊंचे त्याग को पहुंच जाते हैं और शरीर की स्थिति पर्यंत उसका उपयोग केवल सेवा के लिए करना सीख जाते हैं, और यहाँ तक कि सेवा ही उसकी वास्तविक खुराक हो जाती है। उसका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब सेवा के लिए ही होता है। इससे उत्पन्न सुख ही सच्चा सुख है, ऐसा महसूस करने वाला मनुष्य अंत में सत्य की झांकी करेगा। इस दृष्टि से हम सबको अपने परिग्रह पर विचार कर लेना चाहिए। याद रखें कि वस्तुओं की भांति विचार का भी परिग्रह न होना चाहिए। अपने दिमाग में निरर्थक ज्ञान भर लेने वाला मनुष्य परिग्रही है। जो विचार हमें ईश्वर से विमुख करते हों अथवा ईश्वर की ओर न ले जाते हों, वे सब परिग्रह के अंदर आते हैं और इसलिए छोड़ने के योग्य हैं।
1: लीजिए, आप सुनिए एक और भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

0: प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
6: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
7: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
6: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
0: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
8: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की

0: समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर बीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुनी विदुषी गिरिजा देवी की राग भैरवी में ठुमरी गायन, बोल थे बाबुल मोरा नहर छोटा जाए। कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवा रहे हैं विदुषी गिरिजा देवी की ही गाई एक और ठुमरी, बोल है अरज मोरी मान लो। आपके साथ तबला संगत की है फैयाज खान ने, वॉयलन पर है पंडित वीजी चौक और हारमोनियम पर है महमूद ढोलपुरी।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुनी विदुषी गिरिजा देवी की ठुमरी गायन। आपके साथ तबला संगत की थी फैयाज खान ने। इसी के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। DMK और ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया DMK पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम TVK को समर्थन देने के मुद्दे पर

0: विदुथलाई चिरुथैगल काची वीसीके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर एम जे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी और निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में भाग लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त भारती जोशी का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, गीत निर्झर कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना देव परदेश फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन। इस गीत को सुनना चाहा था ग्राम आनंद गांव जिला जालना से परमेश्वर शिंदे, कावेरी शिंदे, वैष्णवी शिंदे, स्वाति शिंदे, प्रहलाद शिंदे और सभी शिंदे परिवार। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बौडाना ने।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम का अगला गीत है प्यार दीवाना होता है फिल्म से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार है मदन पाल और संगीतकार बाबुल बोस। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है जिला खांडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से हमारे श्रोता हैं विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद और वैदही वेद।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: पूछे
1: मार्केट ट्रेंड देख
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर देख
3: पहले ही बोला ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: ये दोस्त ने बोला
5: डेविड जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है मोरटक्का माफी जिला खांडवा से जगन्नाथ पटेल कमला पटेल अंतिम पटेल भावना पटेल और मन पटेल ने बक्सर बिहार से हमारे श्रोता हैं शरीफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी असलम अंसारी अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर सोनम अद्विका सारनपुर बक्सर से हमारे श्रोता हैं राज एस डी अंसारी आसमा खातून अंसारी आफताब अंसारी मेहताब अंसारी और मीराज अंसारी आप सभी सुनना चाहते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से किशोर कुमार और उषा खन्ना के गाए इस गीत को जिसके गीतकार हैं इंदेवर और इस गीत को धुनों से सजाया है कल्याण जी और आनंद जी ने तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका ये गीत

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर का आनंद इस समय आप ले रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत है दूध का कर्ज फिल्म से अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के स्वर में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे धुनों में पिरोया है अनु मलिक ने। फरमाइश आप सभी की। शिव कोटरी ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, कुमारी सपना सेन और ओम सेन। शिरनेरी बाड़मेर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं कृष्ण कुमार डावी। सौंघा धमतेरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लाभिया खुराना, मेधा, आशीष, विशु, साक्षी, अनुज और छोटू खुराना। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आपका ये गीत।

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोताओं, गीत निर्झर कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को धुनों से सजाया है रविंद्र जैन ने। फरमाइश करता है सांता क्रूज मुंबई से मंजुला जोशी, मुकेश जोशी और आयुष्मान जोशी। सिद्धार्थ नगर मुंबई से शेख सुहेल, उमा सुहेल और नुसरत सुहेल। रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, शबनम अंसारी, रेहान अंसारी और शकीला अंसारी। बिहार से हमारी श्रोता हैं आसमा परवीन और वली भाई अंसारी। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। इसी गीत को सुनना चाहा है लाला बाजार से बाबा फरहान, खुशबू, संजू, सामिया, आफिया, मुमताज़, अमान, माही, नीलोफर, शन्नो और शब्बो ने। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: गीत निर्झर कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है लच्छनपुर से रामजी साहू और जीवनलाल रजक, कल्लनगंज खांडवा से हमारे श्रोता हैं कौसर बी पवार, हसीना बी पवार, अलमाज बानो, हीना सैयद, वनीता गंगराडे, मुमताज़ मंसूरी और सबीना जहीर पवार। बाजार फैल शहगांव से इसी गीत को सुनना

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में हिना फिल्म से। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। फरमाइश है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी रंजू अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमा, पाली, सुनील पाठक और विनोदपुरी। गोवर्धन बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी, वीना, आशीष और चैतन्य। चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं राहुल खुराना और रचिता खुराना। इसी गीत को सुनना चाहा है तेलंगाना स्टेट निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश और आसिफ शेख ने। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर हिना फिल्म का ये गीत।

हसीना फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज के गीत नजर कार्यक्रम से अपनी दोस्त भारती जोशी को दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

गीत निर्झर। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनी सामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होनी है। वहीं केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी बातचीत की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। वे मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में आज गरज के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आशा भोसले के गाए इस नगमे के साथ।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027, आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय।

0: उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: सबरंग कार्यक्रम में लीजिए अब पेश है कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत।
2: सोचे क्या हिल मिल जा।

श्रोताओं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाए इसी गज़ल के साथ आज का सबरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से सुनिए प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह आकाशवाणी देहरादून से नेहरू कॉलोनी तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आकाशवाणी के अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रोताओं सहित अन्य गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इस मैराथन के आयोजन से आकाशवाणी न केवल अपनी गौरवशाली संस्कृति और अस्मिता का उत्सव मना रही है, बल्कि स्वास्थ्य, स्फूर्ति, एकजुटता और लोक संपर्क का संदेश भी प्रसारित कर रही है। चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हरकी पौड़ी से भीमगोड़ा क्षेत्र तक स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कुछ स्थानों पर फुटपाथ और

0: और नालियों के ऊपर द्कानें संचालित होती मिली, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में परेशानी हो रही थी। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ी दुकानों को पीछे हटवाया और स्पष्ट निर्देश दिए कि फुटपाथ और नालियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को नियमित निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा और कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने स्वीकृत धनराशि का उपयोग तय मानकों के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जनहित के कार्यों में तेजी लाई जा सके। स्वीकृत योजनाओं में विभिन्न जिलों में भवन निर्माण, मंदिर के सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार और पुलिस और होमगार्ड विभाग के कार्यों के साथ ही शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए भी धनराशि जारी की गई है। देहरादून के करजन रोड स्थित गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में संचालित जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र डीडीआरसी दिव्यांगजनों के लिए राहत और सहारा बनकर उभरा है। यहां प्रत्येक बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिल रही है। वहीं डीडीआरसी द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 8791009301 के माध्यम से दिव्यांगजन घर बैठे भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में पहली बार गांधी शताब्दी अस्पताल में डीडीआरसी संचालन के लिए 4 कमरे उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 1 वर्ष से भी कम समय में 600 नए दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड तैयार किए गए हैं, जबकि 250 प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण भी किया जा चुका है। वहीं दून निवासी दिव्यांग लाभार्थी मनोज बहुगुणा ने बताया कि लंबे समय से उन्हें यूडीआईडी कार्ड बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। डीडीआरसी के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने केंद्र पहुंचकर आवेदन किया, जहां दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनका यूडीआईडी कार्ड तैयार हो गया। श्री केदारनाथ धाम यात्रा के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने धाम पहुंचकर देर रात्रि विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने धाम में उपस्थित श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित कर यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया। श्रद्धालुओं ने दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं व अन्य सुविधाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने श्री केदारनाथ धाम में निर्मित अस्पताल का भी निरीक्षण किया। अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकीय उपकरणों एवं दवाओं की स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:10 पर प्रसारित किया जाएगा।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को भारती जोशी का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, आज के सुरबहार कार्यक्रम में एक ही कलाकार के तहत हम बात कर रहे हैं आज एक भारतीय अभिनेत्री की, जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करती हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी। श्रोताओं, पद्मिनी कोल्हापुरी ने खुद को 80 के दशक की एक कामयाब अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। 4 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 75 से अधिक फिल्मों में काम किया। अपना करियर उन्होंने 1972 में

7 साल की उम्र में शुरू किया था, जब उन्होंने जिंदगी और ड्रीम गर्ल जैसे फिल्मों में काम किया। लेकिन श्रोताओं, पद्मिनी कोल्हापुरी को सफलता मिली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, जिसमें उन्होंने किशोर रूपा की भूमिका निभाई और इस गीत के जरिए लोगों को आकर्षित किया।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, 15 साल की उम्र में पद्मिनी कोल्हापुरी ने बदला लेने वाली ड्रामा फिल्म इंसाफ का तराजू में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और 17 साल की उम्र में संगीतमय रोमांटिक ड्रामा प्रेम रोग के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। वो ये पुरस्कार जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बन गई थी। तो आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं उन्हीं की फिल्म प्रेम रोग से ये गीत।

0: परफॉर्मेंस का बोलो पीछे
1: मार्केट ट्रेंड है
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर देख
3: पहले ही बोला ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: ये दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
7: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरबहार और आज इस कार्यक्रम में एक ही कलाकार के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं एक भारतीय अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी के कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत श्रोताओं पद्मिनी कोल्हापुरी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी नेचुरल एक्टिंग उनकी आंखों में भावनाएं इतनी गहराई से झलकती थी कि दर्शक खुद को कहानी से जोड़ लेते थे

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा?
1: हाँ
0: क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: श्रोताओं, 1983 में बनी फिल्म सौतन में पद्मिनी कोल्हापुरी ने अहम भूमिका निभाई और उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए भी नामांकित किया गया। वहीं 1985 में बनी फिल्म प्यार झुकता नहीं के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी। पद्मिनी कोल्हापुरी ने श्रोताओं आहिस्ता आहिस्ता, विधाता, दो दिलों की दास्ता, स्वर्ग से सुंदर और वो सात दिन जैसी कई फिल्मों में काम किया। तो आइए कार्यक्रम में आगे, अब आपको सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्म वो सात दिन का ये गीत।

श्रोताओं, वो सात दिन फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज के सुरबहार कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। आज एक ही कलाकार के तहत हमने आपको सुनवाए पद्मिनी कोल्हापुरी के चुनिंदा फिल्मी गीत। कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए भारती जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक भाइयों, फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म शहीद से मोहम्मद रफी और एचके खान मस्ताना की आवाज में।
1: Built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: कार्यक्रम का गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं पद्मावत फिल्म से श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाज में। इस गीत को सुनो में पिरोया है संजय लीला भंसाली ने।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: सैनिक भाइयों, फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत है हेट स्टोरी 4 फिल्म से, जुबिन नौटियाल और अमृता सिंह की आवाज़ में। गीतकार है मिथुन, संगीतकार मनोज मुंतशीर।

सैनिक भाइयों, जिंदगी 50-50 फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। जय हिंद।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं शंकर उप्रेती का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

प्रहलाद सिंह मेहरा के स्वर में आपने कुमाऊनी लोकगीत सुना, और अब एक और कुमाऊनी लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं। गायिका हैं शैलजा मसीह।

लोकसुर कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी अल्मोड़ा से सुन रहे हैं, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अब

क्रम में आपको लिए चलते हैं एक गढ़वाली लोकगीत के साथ। स्वर दिया है नीता कुकरेती और प्रकाश मोहन गढ़वाली ने, और ये है गढ़वाली लोकगीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय हम श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजुबांग का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत मेरी पसंद में आप सभी का। श्रोताओं, 90 के दशक को याद कीजिए। समय बॉलीवुड में कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौर, कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत भट्टाचार्य अपनी जबरदस्त दमदार गायकी के लिए बेहद मशहूर हो चुके थे। इनके अलावा अलीशा चिनॉय, बाबा सहगल, फाल्गुनी पाठक, लकी अली, सुनीता राव, दलेर मेहंदी जैसे कई गायक और गायिकाएं हुई जो दर्शकों के बीच बेहद पॉपुलर थे अपने पॉप सिंगिंग के जरिए। और 90 के इन महारथियों के बीच एक ऐसा सिंगर भी आया जिसने इंडियन और वेस्टर्न शैली के गानों से म्यूज़िक को

0: और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। इस पार्श्व गायक का नाम था रेमो फर्नांडिस, और आज रेमो को हम ख़ास तौर पर याद कर रहे हैं क्योंकि आज 8 मई उनका जन्मदिन है। तो रेमो को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की, और उनकी आवाज़ का जादू चुनिंदा नगमों के साथ हम पेश कर रहे हैं मेरी पसंद में।
1: Pogodę, bo

श्रोताओं, साल 1995 की बात है। बॉम्बे फिल्म के लिए A.R. रहमान ने गाने कंपोज किए और एक गाना आपको ज़रूर याद होगा, एक हो गए हम और तुम। ये गाना उस समय बेहद प्रसिद्ध हुआ और उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से बॉम्बे एक रही। और गाने की बात करें तो रेमो फर्नांडिस की आवाज़ हम्मा हम्मा, ये गाना जितना उस समय पॉपुलर था और आज भी हम सुनते हैं तो तरोताज़ा हो जाते हैं।

रेमो का पूरा नाम लुइस रेमो डिमारिया बर्नार्डो फर्नांडिस है। उनका जन्म 8 मई 1953 को पणजी गोवा में हुआ था। उन्होंने मुंबई के सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ाई की है और भारतीय पॉप रॉक और फ्यूज़न के वो जाने माने मशहूर कलाकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने गानों में पश्चिमी संगीत और भारतीय गोवन संस्कृतियों का ज़बरदस्त बेमिसाल मिश्रण कर अपनी ख़ास पहचान बनाई है।

का जो सबसे बड़ा उनका उनकी जो ताकत है वो उनका फ्यूज़न म्यूज़िक रहा। वो अंग्रेज़ी और हिंदी के साथ ही साथ फ्रेंच, पुर्तगीज़ और कोंकणी भाषा में भी गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं और गाते भी हैं। रॉक म्यूज़िक से रेमो की पहली मुलाकात जब वो मात्र 7 साल के थे तभी हुई थी। कैथोलिक परिवार में परिवेश पाने वाले रेमो के एक कज़न उन दिनों लंदन से लौटे थे और वो बिल हैली का रॉक राउंड द क्लॉक एल्बम लेकर आए थे। रेमो ने बताया है कि अगले 10 साल तक हर दिन वो इस रिकॉर्ड को सुना करते थे और जब वो 14 साल के थे तभी उन्होंने पहला गाना लिखा और इसके लिए गोवा के जो स्थानीय कॉम्पिटिशन्स में उन्हें बेस्ट कंपोज़र, बेस्ट सिंगर और बेस्ट लीड गिटारिस्ट का अवार्ड भी मिला था। और 15 साल की आयु में उन्होंने जो गाना लिखा था वो बेहद पसंद किया गया था, इसे उन्होंने कंपोज भी किया गया था और ये एल्बम आया था उस दौर में जिसका नाम था ओड टू द मसीहा।

तो शोधों 90 के दशक में रेमो बेहद मशहूर कलाकार थे और युवाओं के बीच उनके गाने, उनका संगीत बहुत ही पॉपुलर था। खासकर हम्मा हम्मा, अफलातून अफलातून, ओ मेरी मुन्नी मुन्नी मुन्नी बेबी, मारिया, टेक मी टू कैलकटा, बॉम्बे सिटी और कई फिल्में हैं। एक लंबी फहरिस्त है जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए, उन्हें संगीतबद्ध किया और उस दौर में वो बहुत ही सुने जाते थे। और एक गाना हम याद करें तो जसपिंदर नरूला के साथ प्यार तो होना ही था, ये गाना भी इस फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था वो बेहद दर्शकों द्वारा पसंद किया गया।

तो श्रोताओं, साल 2022 में रेमो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी रिलीज़ की और इसमें वो लिखते हैं कि उन्हें बांसुरी सीखने का बड़ा शौक़ था और इसका भी एक दिलचस्प किस्सा उन्होंने इसमें लिखा है कि उस समय मेरी गर्लफ्रेंड तब मरीन ड्राइव पर एक गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एक बार मैं वहाँ बहुत जल्दी चला गया, उसने एक घंटे में वापस आने के लिए कहा। वहीं पास में चौपाटी पर मैं इंतज़ार करने लगा। वहाँ कुछ लोग गुब्बारे, बच्चों के खिलौने वगैरह बेच रहे थे। तभी मैंने वहाँ एक बांसुरी वाले को देखा, उसके पास रुका और उससे बांसुरी बजाने के मैंने टिप्स लिए और आधे घंटे में ही वहीं पर बांसुरी बजाना सीखा। और रेमो कई इंस्ट्रूमेंट बहुत ही खूबसूरत ढंग से बजाया करते थे, बांसुरी भी उनमें से एक।

तो श्रोताओं, उनके यानी रेमो की पर्सनल लाइफ की बात करें तो रेमो ने एक फ्रेंच महिला मिशेल डेलहाय से विवाह किया और उनके दो बेटे हैं नूह और जोनाह। और उनका गोवा में पुश्तैनी घर है, हालांकि बाद में रेमो और मिशेल अलग हो गए हैं और बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों के गीत उन्होंने गाए हैं, संगीत दिया है, जिनमें अफलातून, बॉम्बे, बेकाबू, खामोशी द म्यूज़िकल, लाइफ में कभी कभी आँखें, प्यार तो होना ही था, दौड़, डेविड औजार, ना घर का ना घाट का, जैसे कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ का जलवा बिखेरा।

रेमो ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ट्रैफिक, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स और जेथ्रो टूल के साथ इयान एंडरसन के गानों को सुनने के बाद ही उन्हें बांसुरी वाद्य से, उसकी आवाज़ से प्यार हो गया। और साल 2016 में रेमो पुर्तगाल जाकर बस गए। 2019 में उन्होंने अपने संस्मरणों और एक कॉन्सेप्ट एल्बम टेरेसा एंड द स्लम बम पर काम करना शुरू किया और उन्होंने 1987 में मदर टेरेसा के साथ बिताए अपने समय को याद किया और इस एल्बम को द लेडी इन कैलकटा नाम से साल 2020 में रिलीज़ किया गया। रेमो ने फिल्मों के लिए आखिरी गाना साल 2013 में लव यू सुनियो के लिए गाया था और आज रेमो फर्नांडिस को उनके जन्मदिन की हम एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें खुशी से रहें अपने परिवार के साथ।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी घर संसार।

0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं बहनों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। आप सभी को आपकी रेडियो सखी हेमलता का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगी और इस समय हमारा कार्यक्रम घर संसार सुन रही होंगी। बहनों आधे घंटे के इस खूबसूरत कार्यक्रम में आज हम करेंगे आपसे कुछ नए रोचक विषयों पर चर्चा और साथ ही करेंगे आप सभी का मनोरंजन कुछ मधुर गीतों से। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों हर वर्ष 8 मई को रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मानवता, सेवा और करुणा को समर्पित है। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के महत्व को समझाने के लिए इसे मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को प्रेरित करता है कि वे बिना किसी भेदभाव के दूसरों की मदद करें और समाज में सहयोग की भावना बढ़ाएं। बहनों विश्व रेडक्रॉस दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के संस्थापक जीन हेनरी डूनेंट के जन्मदिन पर उन्हें सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने मानवता की सेवा और घायलों की सहायता के लिए रेडक्रॉस की शुरुआत की थी। बहनों इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मानवता की भावना को बढ़ावा देना, लोगों को समाज सेवा, करुणा और एक दूसरे की मदद करने के लिए जागरूक करना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी जैसी परिस्थितियों में राहत कार्यों के महत्व को बताना और साथ ही घायल लोगों को उपचार देना और ज़रूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना है। इसके अलावा बहनों रक्तदान के महत्व को समझाना, रक्तदान शिविरों का आयोजन करना और युवा वर्ग को समाज सेवा और मानवता के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना भी रेडक्रॉस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। बहनों रेडक्रॉस दिवस हमें सिखाता है कि मानवता ही सबसे बड़ी सेवा है। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तब उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। यही भावना समाज को मजबूत और संवेदनशील बनाती है। बहनों मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में कई धर्म और संस्कृतियां हैं लेकिन इन सबसे ऊपर है मानवता, जिसका अर्थ है दूसरों के दुख दर्द को समझना और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता करना। बहनों मानवता हमें प्रेम, दया, करुणा और सेवा का संदेश देती है। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, बुजुर्गों का सम्मान करना और दुखी व्यक्ति को सहारा देना, यही सच्ची मानवता है। बहनों मानवता हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। एक छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कई बार बहनों हमारे द्वारा बोले गए शब्द भी किसी हताश व्यक्ति को हिम्मत दे देते हैं। बहनों मानवता केवल बड़े बड़े कार्यों से नहीं बल्कि छोटी छोटी मदद, लोगों की सेवा से शुरू होती है। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना मानवता का सबसे पहला कदम है। ऐसे ही बहनों बुजुर्गों और कमज़ोर लोगों की सहायता करना और उनका सम्मान करना भी मानवता ही है। साथ ही सकारात्मक रहना और लोगों के लिए सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा बहनों युवा वर्ग को भी ये समझना होगा कि वे समाज की सबसे बड़ी ताकत हैं। यदि युवा वर्ग सेवा, सहयोग और जागरूकता के कार्यों में भाग लें तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। इस तरह बहनों हर व्यक्ति अगर दूसरों के प्रति प्रेम, दया और सम्मान की भावना रखे तो समाज और देश दोनों ही मजबूत होंगे। इसलिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी सेवा है। बहनों कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं उम्मीद, सहायता और मानवता का प्रति रेडक्रॉस विषय पर श्री मनोज सनवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रेडक्रॉस सोसाइटी अल्मोड़ा से की गई हमारी क्षेत्र संकलित बातचीत।
1: स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में। सर आज हम रेडक्रॉस दिवस मना रहे हैं। बातचीत के क्रम में सबसे पहले हम आपसे रेडक्रॉस के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या रहा।
2: मैडम रेडक्रॉस की स्थापना 1863 में जीन हेनरी डूनेट द्वारा की गई 1859 के सालफेरिनो युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बहुत लोगों को उन्होंने घायल देखा, तो उनके मन में एक विचार आया कि इनकी सहायता की जाए, एक संस्था बनाने का मन में इनके विचार आया। तो 1863 में इन्होंने इसके बारे में एक विचार रखा सरकार की, उसमें तो सन 1863 में रेडक्रॉस की घोषणा हुई। तो जेनेवा कन्वेंशन एक 1864 में, जिसमें रेडक्रॉस की पहल पर युद्ध के समय घायलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए
0: जी।
2: उसी दिन से रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, जिसे विश्व रेडक्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस के रूप में माना जाता है। भारत में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई। यह संस्था मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता के लिए काम करती है, और इसके उद्देश्य सशस्त्र संघर्षों, युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना होता है।
1: जी सर। सर, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या कोई भी दुर्घटना होती है तो रेडक्रॉस सदस्य समय पर तुरंत सहायता के लिए पहुंचते हैं, तो मानवता की सेवा में रेडक्रॉस सदस्य किस तरह पीड़ितों तक सहायता पहुंचाते हैं?
2: देखिए, सहायता में पहले लोग मानवता के नाते व्यक्तिगत जाते थे, अब प्राकृतिक आपदा में रेडक्रॉस अपनी भूमिका निभाता है। जैसे कहीं पर आग लग गई या कहीं पर कोई बाजार में कहीं पर चोट लग गई या किसी को हार्ट अटैक हो गया, मैं ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज आपको बता रहा हूँ
0: जी,
2: वहाँ पर रेडक्रॉस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजकल आपने देखा होगा हार्ट अटैक बहुत पड़ रहे हैं, तो एक CPR होता है
0: जी।
2: CPR का मैं आपको डिटेल ना बता के थोड़ा सा ही बता दूं कि जब हमारी जो चेस्ट होती है, चेस्ट के पास जहाँ पर रिप्स होती है, नीचे जॉइंट होता है
0: जी,
2: अगर वहाँ पर CPR दिया जाए, मतलब अगर आप आधे आधे मिनट के 3 स्ट्रोक हाथों से दबाया जाए, दोनों हाथों के पंजों को मिला के उनसे अगर चेस्ट को दबाया जाए जोर से
0: जी,
2: तो इसमें बहुत से लोगों की जान भी बच जाती है। और आजकल का माहौल, आजकल का खान पान आपने देखा है कि आदमी को स्ट्रोक बहुत पड़ रहे हैं, तो इसमें रेडक्रॉस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और क्योंकि देखिए, हमें जब भी कोई सूचना मिलती है, जैसे कहीं पर हम कहीं आग लग गई, तो हम उसमें उनकी हेल्प कर पाते हैं
0: जी सर।
2: लेकिन अगर कहीं युद्ध हो गया, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी दो देशों के बीच युद्ध हो गया, तो सबसे पहले वो देश रेडक्रॉस से संपर्क करता है
0: जी।
2: और रेडक्रॉस की भूमिका ये होती है, और हम रेडक्रॉस के लोग हैं, तो हम ये सोच के वहाँ नहीं जाएंगे कि हमने भारत वालों का ही इलाज करना है
0: जी, एक ही पक्ष को नहीं देखना है।
2: नहीं देखना है हमें, तो हमारे लिए दोनों बराबर है
0: जी।
2: तो रेडक्रॉस की भूमिका व्यक्तिगत देश के लिए, अपने देश के लिए नहीं होती है, वो दोनों के लिए होती है। और हम कोशिश करते हैं, हमारी जो रेडक्रॉस सोसाइटी फॉर ऑल इंडिया है, कि घायलों को बाहर निकाला जाए और उनका इलाज किया जाए
0: जी। तो सर, जो यहाँ पर भी कभी कोई दुर्घटना होती है, उसमें बाद में अगर आपको सूचना मिलती है, तो वहाँ पर भी रेडक्रॉस सदस्य अपनी भूमिका निभाते हैं, इनको हेल्प?
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम जाते हैं, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि हम सहयोग करें। और प्रदेश रेडक्रॉस की तरफ से हमें जो कभी कंबल, कभी तिरपाल या किचन सेट मिलते हैं, तो हम समय समय पर लोगों को बरसात में तिरपाल दे देते हैं, जाड़ों में कंबल दे देते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो भी हमसे सहायता बन सके रेडक्रॉस से, हम उनकी पूरी करने की कोशिश करते हैं।
0: सर, इसके अलावा भी और कौन कौन से कार्य रेडक्रॉस संस्था के द्वारा किए जाते हैं?
2: रेडक्रॉस से सबसे बड़ा कार्य तो लोगों की ब्लड डोनेट करके जान बचाना है
0: जी।
2: अल्मोड़ा में हमारे रेडक्रॉस के लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो हमारी टीम है, हमें फोन आते हैं
0: जी,
2: और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम जब उन लोगों के लिए ब्लड की व्यवस्था करते हैं, हमेशा रेडक्रॉस ब्लड देने में सबसे अग्रणी रहता है। और हम अल्मोड़े में कम से कम 4 या 5 ब्लड कैंप लगाते हैं, तो इसलिए मेरा तो सभी लोगों से निवेदन है कि ब्लड डोनेट करने के लिए जो 18 साल से ऊपर हैं और 65 साल से नीचे हैं, उन्होंने रक्तदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से अगर आप किसी की जान बचाते हो, जो खुशी हमें मिलती है वो उन लोगों को भी मिलेगी, क्योंकि आप किसी के परिवार में अगर एक की जान बचाते हो सकता है जिसकी हम जान बचा रहे हैं उनके भरण पोषण करने वाला हो या उस परिवार को चलाने वाला हो, तो जो उनकी ओर से ब्लेसिंग मिलती है उसका आनंद ही अलग है
0: जी। सर, सर, रक्तदान महादान कहा जाता है, तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है?
2: शरीर में 3 महीने के बाद अगर आप ब्लड नहीं भी निकालोगे, हर 3 महीने में रिफॉर्म हो जाता है ब्लड ना, तो आपने ब्लड देना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, आप किसी की जान बचाओगे तो आपको जो आनंद मिलता है और आपको कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए लोगों में ब्लड के प्रति जागरूकता बहुत हो रही है। और बहुत लोग, हम तो अल्मोड़े में बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो ब्लड देने को तैयार रहे, लेकिन अभी भी जो गांव का थोड़ा सा तबका है, जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो अपने परिवार का ब्लड देने में अभी भी हिचकिचाते हैं। बहुत जगह जगह पे जहाँ भी कैंप लगता है वहाँ पर हम लोगों से कहते हैं, स्कूलों में हम जाते हैं, हमने हर स्कूल में युवा रेडक्रॉस टीम बना रखी है
1: जी।
2: और उन बच्चों से भी कहते हैं कि लोगों को ब्लड के प्रति जागरूक करें और उनको समझाएं कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारी युवा पीढ़ी जो नशे की ओर भाग रही है, मेरा जो पेरेंट्स है उनसे निवेदन है कि जब बच्चा आपका घर पहुँचता है तो कम से कम उसकी जेब या उसका बस्ता जरूर टटोले, देखें कि बच्चा क्या कर रहा है। 75% बच्चा आज नशे की ओर को जा रहा है या उसको धकेला जा रहा है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चे को चेक करें, और जब वो स्कूल जाता है, जब घर आता है, स्कूल में भी जो प्रिंसिपल है उनसे कहा जाए कि बच्चे को वॉच करते रहें कि बच्चा नशे की ओर ना जाए।
1: जी सर, और युवाओं को थोड़ा समाज सेवा और मानवता के कार्यों में जोड़ना भी जरूरी है।
2: हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर बच्चे समाज सेवा करेंगे, हमारा जो मेन कर्तव्य है रेडक्रॉस का कि जो भी परेशान है, जो भी दुखी है, जब हम सबको खुशहाल देखेंगे, ये रेडक्रॉस का मकसद भी है, और कि गरीबों की सहायता करी जाए, तो रेडक्रॉस करता है, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है।
1: सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति रेडक्रॉस संस्था से जुड़कर मानवता की सेवा करना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है?
2: इसमें एक तो होता है एनुअली, एनुअली में 100 रुपए की रसीद कटती है। हर 3 साल बाद रेडक्रॉस समिति का गठन होता है। अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं रेडक्रॉस से परमानेंट जुड़े रहूं, तो उसके लिए आपको 1,000 रुपए की आजीवन सदस्यता रसीद कटती है। और जो व्यक्ति रसीद 1,000 रुपए जमा करके सदस्य बनता है, तो उसको हम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शामिल कर लेते हैं और समय पर उसमें सूचना देते रहते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, सदस्यता जो 1,000 रुपए की है उसको ग्रहण करिए और रेडक्रॉस को मजबूत करिए, जिससे हम लोगों की सहायता कर सकें, गरीबों की सहायता कर सकें, जहाँ पर भी कोई भी परेशानी हो, चाहे वो आग लगना हो, चाहे एक्सीडेंट हो, या कोई भी चीज़ हो, हम वहाँ पर सब मिलकर, क्योंकि रेडक्रॉस एक व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक संस्था है, इसमें एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जब हम कलेक्टिव होंगे, हम सब इकट्ठे होंगे, तभी हम रेडक्रॉस के कार्यों को पूरा कर पाएंगे।

0: पाएंगे और लोगों की सहायता कर पाएंगे।
1: सर, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन हम देख रहे हैं ना कि आज व्यस्त जिंदगी में लोग एक दूसरे के लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे में सेवा भावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है?
0: देखिए, आदमी को ये चीजें कब याद आती है? जब वो अपने घर के किसी व्यक्ति को परेशान देखता है, जब उसके प्रति लोगों की सहायता की भावना देखता है और लोग उसके लिए खड़े रहते हैं। रेडक्रॉस ही नहीं, जरूरी नहीं कि रेडक्रॉस ही करता है, आम आदमी में लोगों के प्रति जो सहानुभूति है, जो दुख और दर्द देख के उसके साथ खड़े होने की प्रवृत्ति है, वो हमें लानी पड़ेगी। क्योंकि मैं परेशान नहीं हूँ तो मैं दूसरे की परेशानी को नहीं देख पाता हूँ, परेशानी मैं तब देख पाता हूँ जब मेरे घर में या मुझे परेशानी हो, और जब लोग मेरे पीछे खड़े रहते हैं तब मुझे लगता है कि देखो मेरे भी लोगों के प्रति ये भावना रखनी चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए।
1: सर, आप एक लंबे समय से अल्मोड़ा की रेडक्रॉस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपके अनुभव के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा अनुभव जो आप हमसे साझा करना चाहें जिसने आपको प्रेरित किया।
0: मैं 1985 की बात बताऊं, धारणवाला में एक गाड़ी गिरी आर्मी वालों की, मैं दो लोगों की डेथ हुई आर्मी वालों की, कम से कम गाड़ी में 30-35 लोग थे, तो उनको एडमिट किया गया अल्मोड़े में। उस समय मैं हूँ करीब 18-19 साल का
1: जी।
0: जब उन्होंने कहा भैया अपने अपने नाम लिखा दो, तो मैं भी वहाँ अपना नाम लिखा है कि मैं ब्लड दूंगा, और मैं जब घर पहुँचा तो मैंने ईजा से कहा कि मैं वहाँ ब्लड में अपना नाम लिखा है, आपको विश्वास नहीं आएगा, मेरी ईजा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया कि ब्लड देने से आदमी की मौत हो जाती है। उस दिन मैं डर गया।
1: अच्छा।
0: तो मुझे लगा ईजा ठीक करी, लेकिन जब दूसरे दिन मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, ब्लड तो खैर मैंने नहीं दिया, जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा वहाँ लाइन लगी है लोगों की ब्लड देने के लिए, तब मुझे लगा कि मेरी ईजा कि मैं उसका बेटा हूँ, इस कारण मेरे को बचा रही है कि तुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन उस दिन से मुझे, जब मैं हॉस्पिटल गया दूसरे दिन, मुझे प्रेरणा मिली, उसी दिन मैंने फिर ब्लड दे दिया। पहले क्या था ना मैडम, पहले यहाँ इक्विपमेंट नहीं थे कि ब्लड को संरक्षित रखा जाए
1: जी।
0: क्योंकि ब्लड एक महीने बाद खराब हो जाता है
1: जी।
0: पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, तो मेरा ब्लड चढ़ा भी नहीं, खैर उस समय मेरा ब्लड जो है नैनीताल भेज दिया
1: जी।
0: तो नैनीताल में किसी को ब्लड चढ़ा उस दिन से, 1985 से
1: जी जी।
0: और उसके बाद मैंने तो जितना ब्लड दिया, मैंने अल्मोड़े में कम से कम उस समय से लेके अभी तक हजारों लोगों को ब्लड दिला दिया है
1: जी। सर, बहुत बढ़िया। सर, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, मानवता की सेवा में सदैव तत्पर रेडक्रॉस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे कार्यक्रम घर संसार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, अभी आप सुन रही थी उम्मीद, सहायता और मानवता का प्रतीक रेडक्रॉस विषय पर श्री मनोज सनवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष रेडक्रॉस सोसाइटी अल्मोड़ा से की गई हमारी क्षेत्र संकलित बातचीत। और अब समय हो चला है गीत संगीत का, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत, लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये संदेश।
2: TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometers, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: मार्केट के बारे में क्या
4: परफॉर्मेंस का बोलो,
3: नहीं तो पूछे
4: मार्केट ट्रेंड है,
3: सुनने में आया कि
5: आज की खबर में
6: पहले ही बोला ब्रो,
4: माय प्रेडिक्शन इज
6: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन,
4: मेरे दोस्त ने बोला
7: देवी जी की सुनो।
8: अब अच्छा लग रहा है ना, लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
10: इंस्पिरेशन बिल्ट इनटू एवरी अराइवल, दिस मे ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज।
11: मीट द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, वेयर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मीट्स प्रीमियम कंफर्ट एंड सेफ्टी, नाउ एट एन इफेक्टिव प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹9.72 lakh।
10: यस, ₹9.72 lakh। ऑफर वैलिड टिल 31st मे। ओन दिस स्टाइल आइकन एट एन EMI ऑफ जस्ट ₹8.99 पर मंथ।
11: एक्सपीरियंस लग्जरी विद अ पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री व्यू कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले and 6 airbags as standard.
10: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
12: Nexa.

0: to every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज़ देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
4: सॉरी,
3: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
4: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
3: मतलब
4: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
6: स्वागत है बहनों एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम घट संसार में। बहनों आज है शुक्रवार और आज का हमारा खास सेगमेंट होता है फैशन फ्राइडे। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे गर्मियों में बालों की देखभाल विषय पर। बहनों कहते हैं ना कि महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाने में उनके बालों का विशेष योगदान होता है। काले घने चमकदार और मजबूत

बाल महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन बहनों, गर्मी का ये मौसम हमारी त्वचा के साथ साथ बालों को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, इसलिए गर्मी में बालों की देखभाल करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। गर्मी के मौसम में बाल तेज धूप से डैमेज हो सकते हैं, ऐसे में जब भी धूप में घर से बाहर निकलें तो आप अपने बालों को कैप, दुपट्टे या फिर स्कार्फ से कवर कर सकती हैं। बहनों, गर्मी एक ऐसा समय है जब पसीना और तेल सिर की त्वचा पर जमा हो जाता है, जिससे डैंड्रफ और स्कैल्प पर खुजली होती है। इसलिए बालों को नियमित रूप से धोएं। बाल धोने के लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा बहनों, बालों के लिए अच्छे शैम्पू और कंडीशनर का प्रयोग करें। हो सके तो ऐसे शैम्पू का चुनाव करें जो प्राकृतिक चीज़ों से बना हो और जिसमें केमिकल्स ना हों, जिससे आपके बालों का रूखापन कम हो सके और बालों में नमी बनी रहे। बहनों, बाल धोने से पहले आप उन पर तेल अवश्य लगाएं। तेल मालिश करने से लगभग एक घंटा बाद आप बालों को धो लें। अगर आपके बाल अधिक ड्राई हैं तो आप एक दिन पहले भी बालों पर तेल मालिश कर सकती हैं, इससे बालों को अच्छी नमी मिलती है। इसके अलावा बहनों, हेयर ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें। बहनों, जो भी हम आहार लेते हैं उसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है, इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार लें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, इससे बालों में नमी बनी रहती है। तो बहनों, ये तो थी कुछ बातें गर्मियों में बालों की देखभाल विषय पर। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत गीत।

बहनों, इसी गीत के साथ अब धीरे धीरे समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं दीपिका पंत। बहनों, जल्द ही आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी हेमलता को दीजिए आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्रों से रिले होंगे। 1:05 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी देहरादून है। 1 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
2: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में

ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, असम के चाय उद्योग के अनुभवों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन को नई दिशा देने का कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वॉकथॉन का आयोजन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोकभवन में आयोजित उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद की 17वीं बैठक में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं बल्कि एक पवित्र दायित्व है। ऐसे बच्चे जिनके पास संसाधनों, संरक्षण और अवसरों का अभाव है, उनके जीवन को संवारने के लिए संवेदनशील और सक्रिय प्रयास आवश्यक हैं। राज्यपाल ने परिषद के सदस्यों से अधिक उत्साह, सक्रिय भागीदारी और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण परिषद जैसी संस्था को समय के अनुरूप नई सोच, नई कार्यशैली और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने प्रत्येक जिले में कल्याण परिषद गतिविधियों को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर प्रभावी बाल कल्याण केंद्र विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक योजनाओं और सहायता का लाभ बेहतर ढंग से पहुंच सके। बैठक में राज्यपाल ने बाल कल्याण परिषद के वर्ष 2026-27 के अनुमानित आय और व्यय का अनुमोदन करने के साथ ही विभिन्न बिंदुओं पर अपनी सहमति दी। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी इन दिनों असम के दौरे पर हैं। उन्होंने असम के बारपाथर स्थित चाय बागानों का दौरा कर वहां की उत्पादन क्षमता, प्रसंस्करण प्रणाली और विपणन व्यवस्था का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय चाय उत्पादकों, निर्यातकों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने, गुणवत्ता सुधारने और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने के संबंध में सुझाव प्राप्त किए। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में चाय उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य की जलवायु उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि असम के चाय उद्योग के अनुभवों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन को नई दिशा देने का कार्य किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी विपणन रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय किसानों को अधिक लाभ मिल सके। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि यात्रा मार्ग, नदी और पहाड़ियों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार यात्रा मार्ग पर स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए 400 से अधिक सफाई कर्मी सीतापुर से केदारनाथ धाम तक लगातार सफाई अभियान चला रहे हैं। अकेले गौरीकुंड क्षेत्र में 110 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। सोनप्रयाग में प्लास्टिक कचरे को कॉम्पैक्ट करने के लिए विशेष मशीनें लगाई गई हैं। अब तक लगभग केदारनाथ सहित यात्रा मार्ग पर 7 टन प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर प्रोसेसिंग के लिए के बाद रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा चुका है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर 600 से अधिक डस्टबिन लगाए हैं और पर्यावरण मित्रों की तैनाती कर नियमित सफाई और कचरा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। उखीमठ के उप जिलाधिकारी अनिल रावत ने श्रद्धालुओं से प्लास्टिक और अन्य कचरा निर्धारित कूड़ेदान में ही डालने की अपील की है।
1: सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से लगभग 400 के आसपास कार्मिकों को स्वच्छता और सफाई के लिए लगाया गया है, जिनमें से मात्र गौरीकुंड में ही 110 कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। साथ ही शौचालय, यात्रा मार्ग की सफाई और अन्य कार्यों का संपादन किया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम पधारने वाले सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने कूड़े का समुचित निस्तारण करने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और जिला प्रशासन को स्वच्छता और सफाई के दृष्टिगत अपना आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
0: वहीं केदारनाथ यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु भी सफाई व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की सराहना कर रहे हैं।
2: यहाँ पर जो टॉयलेट की सुविधा है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सफाई हो रही है और सब काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सफाई मिलेगा, पर बहुत अच्छा है। जय श्री केदार।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। अब उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आगामी मॉनसून सीजन को लेकर सचिवालय में विभागों और जिलों की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को मॉनसून पूर्व तैयारियां समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: मुख्य सचिव ने कहा कि मानसून के दौरान जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चारधाम यात्रा भी संचालित हो रही है, ऐसे में सभी रेखी विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड में कार्य करना होगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मानसून शुरू होने से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करते हुए क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली, पेयजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और शहरी विकास विभाग को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राज्य में नदी तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए नदियों के चैनलाइजेशन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने नदी मार्ग में जमा RBM को हटाने के निर्देश दिए ताकि नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित ना हो और कटाव से आबादी व आधारभूत संरचनाओं को नुकसान न पहुँचे। बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने विभागीय तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य आपातकालीन चालन केंद्र में विभिन्न रेखी विभागों के नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है और मानसून अवधि के लिए समन्वित कार्य योजना तैयार कर ली गई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल खुलबे।
0: आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र से नेहरू कॉलोनी तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में केंद्र सरकार की थीम कर्मयोगी मिशन के तहत राजयोग मेडिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला जज, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से तनाव मुक्त और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि संबंधों में मधुरता और

0: मानसिक शांति के लिए राजयोग मेडिटेशन बेहद जरूरी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद उपयोगी साबित होते हैं।
1: जिस तरीके से तनाव को महसूस करते हैं अपने कार्य को करने में, उससे कैसे तनाव को कम किया जा सके, उससे कैसे उसको मैनेज किया जा सके, इस संबंध में मेडिटेशन क्या अभ्यास बताया, मेडिटेशन को किस तरीके से करना है, क्या है उसकी क्या उपयोगिता है, इस संबंध में जानकारी दी और मेडिटेशन का कार्यक्रम किया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली ने कुछ विधिक साक्षरता के संबंध में हमने कुछ बातें रखी, जिसमें लोक अदालत जो आगामी लोक अदालत है 9 तारीख को वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो उसके बारे में हमने चर्चा की।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने स्वीकृत धनराशि का उपयोग तय मानकों के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जनहित के कार्यों में तेजी लाई जा सके। स्वीकृत योजनाओं में विभिन्न जिलों में भवन निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यकरण, ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार, पुलिस और होमगार्ड विभाग के कार्यों के साथ ही शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, असम के चाय उद्योग के अनुभवों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन को नई दिशा देने का कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की, मॉनसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वॉकथॉन का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। शुरुआत कर रहे हैं रेमो फर्नांडिस और साथियों के गाए इस गीत के साथ।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोता भी सुन रहे थे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz पर। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओ, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाए।

0: जी
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
0: जी।
1: अच्छा चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
0: जी।
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
0: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
0: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो बिमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
0: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
0: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन और किसी अन्य भाषा में

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमूर्चित पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবীর সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया।

0: मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियम

0: रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले।

रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले, तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले, तड़ित ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1280 अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं गढ़वाली लोकगीत के साथ। कलाकार हैं अमरदीप सिंह नेगी।

श्रोतों, समूह स्वरों में ये गढ़वाली लोकगीत अभी आप सुन रहे थे और अब कुमाऊनी लोकगीत आपको सुनवाते हैं। कलाकार हैं कमलेश पंत।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय

0: सेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
4: माइग्रेशन पथ।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप

हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार

0: तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार।

0: एक बार फिर पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर की उपयोगिता। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिबाकर महंती।
2: किसान भाइयों, दालों की फसलें परंपरागत रूप से मानव भोजन तथा पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत में उगाए जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसलें चना, मटर, मसूर, लोबिया, राजमा, भाट, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया तथा गेहूं है। दालों को गरीबों के लिए मांस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होती है तथा ये भारतीय शाकाहारी व्यक्तियों के दैनिक भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक है। दलहनी फसलें अपनी बढ़वार के दौरान 80 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग करती है। सौभाग्य से अधिकतर नाइट्रोजन की प्राप्ति स्थिरीकरण से होती है, जिसकी मात्रा विभिन्न दलहनी फसलों से अलग अलग होती है। इनकी जड़ों में गांठें होती है, जिनमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया की मदद से ये वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तथा उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये फसलें औद्योगिक रूप से उत्पादित नाइट्रोजन उर्वरक पर निर्भर नहीं रहती, लेकिन फसल की प्रारंभिक अवस्था में गांठे या नडुल बनने से पहले, जो कि 3 से 4 सप्ताह लगता है, उस समय तक दलहनी फसलों को आरंभिक मात्रा के रूप में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे बुआई के समय डाला जाता है। अन्यथा दलहनी फसलों के लिए 200 से 400 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर उपयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजन आगत के रूप में दलहनों और राइजोबियम सहजीवन द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राइजोबियम मृदा जीवाणुओं का एक समूह है, जो दलहनी फसलों को संक्रमित कर जड़ों में गांठे बनाते हैं। राइजोबियम मिट्टी में पाए जाते हैं और संक्रमण के बाद दलहनों में गांठे बनाते हैं, जहां वे वातावरण की नाइट्रोजन को पौधों को शीघ्रता से उपलब्ध होने वाले रूप में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन को गांठों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, जहां उसका उपयोग पौधों की वृद्धि में होता है। जैसे ही दलहन फसल तक पक जाती है, गांठे फूट जाती है और राइजोबियम आपस मिट्टी में चले जाते हैं, जहां वे स्वतंत्र रूप से रहते हैं या उसी दलहनी फसल को दोबारा बोने के बाद पुनः संक्रमित करते हैं। बैक्टीरिया की येलो राइजोबियम, एजो राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, मेजो राइजोबियम, राइजोबियम और सिनोराइजोबियम वंश के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को सामान्य तौर पर राइजोबियम कहा जाता है, और ये संक्रमित करने और गांठ बनाने तथा सहजीवन द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। तथापि विशेष प्रजाति या उपप्रजाति के राइजोबियम किसी विशेष दलहनी फसल को ही संक्रमित करता है। उदाहरण के लिए मटर का राइजोबियम लेग्युमिनेसरम बायोबार बीसीए, भट को ब्राडी राइजोबियम जापोनिकम, अरहर को राइजोबियम स्पेसीज लोबिया बर्ग ही संक्रमित करते हैं। कभी कभी विभिन्न

दलहनी फसलें, उदाहरण के लिए मसूर तथा मटर को एक ही प्रजाति के राज्यव्यापी संक्रमित कर सकते हैं। फिर भी इन्हीं फसलों के मध्य कई विशेष राज्यव्यापी किसी फसल में अन्य फसल की तुलना में अधिक प्रभावकारी होते हैं। राज्यव्यापी स्पेसिस का लोबिया समूह नोडुलेशन के लिए चना, मूंग तथा उड़द को भी संक्रमित करता है। बहुत सी मृदाओं का जैविक पदार्थों में राज्यव्यापी किसी दलहनी फसल के भागीदार के बिना भी विद्यमान रहते हैं। इन्हें स्थायी राज्यव्यापी कहते हैं। जबकि किसानों द्वारा उपचारित करके किए गए राज्यव्यापी इंट्रोड्यूस कहलाते हैं। मृदा में मूल राज्यव्यापी की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिनमें उनके प्रजातियां तथा प्रजातियां के भी अनेक स्ट्रेन होते हैं। संख्या में ये प्रतिग्राम मृदा में 0 से लेकर 1 मिलियन से भी अधिक तक हो सकते हैं। मृदा में राज्यव्यापी की संख्या अनेक कारकों पर निर्भर करती है। इनमें वेजिटेशन, फसलों का इतिहास तथा वातावरण और मृदा की स्थितियाँ सम्मिलित है। दलहनी फसल में राज्यव्यापी के प्रयोग से हम अधिक लाभ हैं की अपेक्षा कर सकते हैं। पहली बात, मूल राज्यव्यापी बोई जाने वाली दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। दूसरे, यदि मूल राज्यव्यापी बोई फसल के लिए उपयुक्त हो पर उनकी संख्या इतनी पर्याप्त नहीं जो पौधों की उचित वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सके, इन दोनों परिस्थितियों में फसल विशेष राज्यव्यापी कल्चर का उपयोग फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरा करने तथा उपज बढ़ाने के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। राज्यव्यापी इनोकुलेशन से विभिन्न दलहनी फसलों की उपज में 15 से 60% तक की वृद्धि हो सकती है। यदि मृदा में उपस्थित राज्यव्यापी बोई गई दलहनी फसल के अनुकूल हो तथा उनकी संख्या भी पर्याप्त हो तो जीवाणुओं के अनुकूलन से उपज में वृद्धि में नहीं भी हो सकती, फिर भी इसका लाभ दानों तथा पौध अवशेषों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा के वृद्धि के रूप में होता है। पुनः मिट्टी तथा फसल अवशेषों में इनोकुलेशन द्वारा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध होगी। अवशेष नाइट्रोजन आपूर्ति का निर्धारण विभिन्न कारकों को विशेष तौर पर पौधों की वृद्धि द्वारा किया जाता है। अधिक वृद्धि का अर्थ है अधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दाने के उपज से जोड़ों द्वारा भेजे गए नाइट्रोजन का निर्धारण होता, परंतु अधिक उपज होने पर अवशेष नाइट्रोजन कम बचती है। जो फसलें बढ़वार में अच्छी पर उपज में कम होती है वह अधिक अवशेष नाइट्रोजन छोड़ती है। औसतन चना, लोबिया, मूंग, मटर तथा अरहर क्रमशः 65, 60, 30, 26 तथा 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर अगली अनाज वाली फसल के लिए अवशेष छटती है। जड़ों में गांठे या नडोल की उपस्थिति का अर्थ यह नहीं है कि अच्छी बढ़वार के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि नडोल या गांठे क्रियाशील न हो। इसकी जांच के लिए जड़ की नडोल को तोड़कर उसका रंग परखने के लिए तोड़ा जाता है। गहरा गुलाबी रंग संकेत होता है कि नडोल दलहनी फसलों तथा अगली फसल के लिए नाइट्रोजन को सक्रियता से उपलब्ध अवस्था में बदल रहे हैं। उपचार के द्वारा दिए गए राज्यव्यापी मृदा की उपलब्ध नमी पर निर्भर रहती है। उपयुक्त संख्या में जीवाणु बनाए रखने के लिए फसल बुआई के 2-3 दिन बाद पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम यह नहीं मान सकते हैं कि फसल में राज्यव्यापी की उपचार मात्र से ही कार्य पूरा हो गया। ये देखना महत्वपूर्ण है कि जीवाणु उपचार कितना प्रभावशाली है और नोड्यूल या गांठों की स्थिति किससे है। जीवाणु के वाहक माध्यम की उच्च जल धारण क्षमता होनी चाहिए। चारकोल जीवाणु वाहक माध्यम के रूप में खासतौर पर प्रयोग किया जाता है, जिसकी जल धारण क्षमता काफ़ी अधिक है। एक आदर्श उपचार सामग्री में अधिकतम प्रभावशीलता, मिश्रण क्षमता, उच्च जीवाणु सघनता, लंबी जीवन अवधि, खेत की बदलती परिस्थितियों में उपयोग क्षमता और सक्रियता का होना आवश्यक है। बढ़वार की अच्छी परिस्थितियों में काफ़ी गांठे या नडुल बनेंगे और उनका रंग स्वच्छ लाल होगा। मृदा में राज्यव्यापी की संख्या जिन बातों पर निर्भर करेंगी उनमें उगाए गए पिछली उन्नत दलहन फसल का समय, फसल का स्वास्थ्य से बढ़वार

0: राज्य बैंक का प्रकार, मृदा का पीएच मान और उसका टेक्सचर प्रमुख है। जीवाणु की मृदा में अगली दलहनी फसल की पुनः बिजाई तक बने रहने से क्षमता अलग अलग होती है। मटर और बीन में राज्य बैंक दोमट और मटियार भूमि जो उदासीन या क्षारीय है उसमें अच्छे पनपते हैं। मृदा की अनुकूल परिस्थितियों में दलहनी मटर की राज्यव्यम 4 वर्ष तक पनप सकते हैं। तथापि मटर तथा बीन के राज्यव्यम कम पीएच मान या रेतली भूमि में कम पनपते हैं। विशेष तौर पर हल्की भूमि में जीवाणु उपचार सबसे सुरक्षित और कम जोखिम वाला विकल्प है। चने की राज्यव्यम के पनपने के बारे में कम जानकारी है। अन्य बातों के साथ साथ बुआई के समय उपचार की संस्तुति की जाती है। यदि मृदा में अवशेष राज्यव्यम की उपस्थिति पर संदेह हो तो जीवाणु उपचार सस्ता और अच्छा प्रयास है। जहाँ पर फसल विशेष राज्यव्यम पहले से विद्यमान हो वहाँ पर प्रत्येक फसल बुआई के समय जीवाणु उपचार का लाभ यह है कि अच्छे जीवाणु का प्रवेश होगा जो अच्छी गांठें बनने और नाइट्रोजन आपूर्ति के सहायक होगा। राज्यव्यम समूह का जो भी जीवाणु इस समय प्रयोग किया जाएगा वो पूर्व में लगाए गए जीवाणु से अधिक प्रभावशाली रहेगा। अतः फसल विशेष राज्यव्यम से उपचार न केवल दाने की उपज और उनमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है बल्कि इन बातों में भी महत्व रखता है। पहला, गांठ बनने की प्रक्रिया से फसल कटाई के बाद दाने और चारे में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होते हैं। साथ में मृदा में नाइट्रेट की उच्च मात्रा रहती है जो अगली फसल के उपयोग में आती है और उसमें बिना नाइट्रोजन या बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन देकर काम चल जाता है। दूसरा, नाइट्रोजन उर्वरकों में मुक्ति फसल उत्पादन का विस्तार करती है और जल स्तर तालाब तथा नदियों को प्रदूषण कम करती है जो घुलनशील रासायनिक उर्वरकों के द्वारा होता है। तीसरे, रासायनिक उर्वरकों द्वारा नाइट्रोजन आपूर्ति एक गंभीर पर्यावरण समस्या है क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन के दौरान काफ़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार राज्यव्यम का प्रयोग कर हमारे किसान भाई दलहनी फसल के उपज, उनकी प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ अगली ले जाने वाली फसल की पैदावार में भी बढ़ा कर सकते हैं। साथ ही भूमि की उर्वरता टिकाऊपन को बनाए रख सकते हैं। यह पर्यावरण की दृष्टि से भी स्वच्छ और प्रदूषण रहित विधि है।
1: दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर की उपयोगिता, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर दिवाकर मोहंती से ये जानकारी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे, रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार शाम 7:30 पर देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में आज कुमाऊनी लोकगीत सुनिएगा जगदीश फुलारी से। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनते हैं कार्यक्रम युवा वाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसी कार्यक्रम में वार्ता प्रसारित होगी विश्व शांति में रेड क्रॉस की भूमिका, वार्ताकार होंगी काव्या गुरुरानी। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा सुनिएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस पर। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत में आज सुधा मल्होत्रा और भूपिंदर सिंह के गाए भजन आप सुन सकते हैं। संध्या 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आज की बातें होंगी दुधारू पशुपालन से लाभ विषय पर, चर्चा का विषय रहेगा मत्स्य पालन से रोजगार संभावनाएं। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे।

0: शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में, रात 9:30 पर श्रोता अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे सुन सकेंगे आपके अनुरोध पर कार्यक्रम के तहत। इसके अलावा फिल्म संगीत सुनिएगा रात 10:30 पर। सुगम संगीत हम लेकर आएंगे सबरस में रात 8:00। इसके अलावा रात 10:00 भी आप सुगम संगीत सुन सकेंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दिन के 2:45 हुए हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। और आज के फनकार हैं जाने माने सुप्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक चेतन आनंद।

गुरदासपुर में जन्म हुआ चेतन आनंद का। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इतिहास विषय के शिक्षक रहे और साल 1940 के दशक के शुरू में सम्राट अशोक पर एक फिल्म की उन्होंने पटकथा लिखी। उनका फिल्मी सफर साल 1944 में आई फणी मजूमदार की फिल्म राजकुमार से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। उस फिल्म में वो मुख्य भूमिका में थे। चेतन आनंद ने अभिनय छोड़कर निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाई और जल्द ही इतिहास रच दिया। साल 1946 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म नीचा नगर ने वर्ष 1946 में कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हासिल किया और ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली फिल्म साबित हुई। 1950 के दशक के शुरू में ही उन्होंने अपने छोटे भाई मशहूर अभिनेता देवानंद के साथ मिलकर नवकेतन प्रोडक्शंस की स्थापना की और इसके बैनर तले बॉलीवुड को अफसर, टैक्सी ड्राइवर और आंधिया जैसी फिल्में मिली।

शुदो नवकेतन प्रोडक्शंस के बाद चेतन आनंद ने हिमालय फिल्म्स के नाम से अपनी अलग कंपनी शुरू की और इस फिल्म के इस बैनर तले हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में मिली, जैसे हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम जैसी बेहतरीन बेमिसाल फिल्में चेतन आनंद ने प्रदान की हिंदी सिने जगत को।

तो श्रोताओं, चेतन आनंद ने एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्माण किया, निर्देशन किया। यूँ तो एक लंबी फहरिस्त है, कुछ फिल्मों के नाम बता देते हैं। नीचा नगर, आंधियाँ, फंटूश, काला बाजार, किनारे किनारे, हकीकत, आखिरी खत, कुदरत ही रांझा, हस्ती, जख्म, साहब बहादुर, हाथों की लकीरें, जाने मन, हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में उन्होंने निर्मित की और निर्देशित की। और उन्हें हकीकत फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कहानी कुदरत फिल्म के लिए उन्हें मिला। इस एक से बढ़कर एक उनकी रचनाएं हैं जो उन्होंने फिल्म निर्देशन के साथ और फिल्म निर्माण के साथ या लेखन के साथ हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को दी। और 6 जुलाई 1997 को मुंबई में वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक ही फनकार अभी आपने सुना और हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। पेश है सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगटे का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का। श्रोताओं, यूं तो फिल्म जगत बेमिसाल गीत संगीत के लिए जाना जाता रहा है। एक समृद्ध, एक विशाल परंपरा का निर्वाह फिल्म जगत के बेमिसाल गानों ने हर दौर में किया है। जितने सुंदर भावों की अभिव्यक्ति गीतकारों ने गीत रचकर की, उतने ही मधुर कर्णप्रिय संगीत से संगीतकारों ने उन नगमों को सुरों में ढाला और उतने ही सुरीले, मखमली, खूबसूरत आवाज़ों के जरिए वो गीत संगीत श्रोता दर्शकों तक पहुँचे। और आज कुछ ऐसे ही खूबसूरत सदाबहार नगमों से सजा है सदाबहार गीत। ऐसा भी एक रंग है जो करता है बातें भी, ऐसा भी एक रंग है जो करता है बातें भी, जो भी इसको पहन ले वो अपना सा लगे।

बन चुके हैं जो जब भी हम सुने हमें तरोताज़ा कर देते हैं, और कुछ गीत ऐसे हैं जिनसे हम खुद ही जुड़ जाते हैं, या यूं कहिए कि हर गीत हमारी अपनी दास्तां होती है और हर एक का नज़रिया अपना अपना, हर एक की सोच अपनी अपनी और हर एक के एहसास अपने अपने। प्यार सच्चा हो तो लफ्ज़ कुछ यूं भी बयां होते हैं।

श्रोताओं, गीत संगीत जिंदगी का उल्लास है, खुशियों की सौगात है, उदासियों में हमारा सच्चा और अच्छा दोस्त है, अकेलेपन का एक ऐसा साथी है जो अल्फाजों की लड़ियों में सजे जिंदगी के मधुर तराने लेकिन बेहद सुहाने हैं। सच ये गाने कमाल करते हैं।

फिजा भी हो जवां जवां, हवा भी हो रवा रवा, और समा कुछ ऐसी अनकही दास्तां कह दे, और ऐसे में फिजाओं का रंग बिखेरता यह खूबसूरत नगमा एक प्यारा सा समा बांध दे, तो जिंदगी कुछ यूं गुनगुना उठती है।

तुशुतों ये तरन्नुम ये तराने इन्हें गुनगुनाने के हजार हैं बहाने। जिंदगी से ये कुछ यूं वाबस्ता है कि हम यही कह उठते हैं, तू तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं तेरी ही महफिल है।

सदाबहार फिल्म गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 100.8 MHz और न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी सायंकालीन सभा के सभी प्रसारण मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ आकाशवाणी बागेश्वर के FM 101.5 MHz पर भी रिले किए जा रहे हैं। संध्या के ठीक 5 बजे हैं, कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर।

बजारा ओ काजल कोटिक दरिया लागली नजरा ओ आ जाए बिमला अलमाला बजारा ओ काजल कोटिक दरी लागली नजरा ओ आ जाए बिमला अलमाला बजारा ओ काजल

ಮಾದಲ ಕೋಟಿಗೆ ದರಿಯಲಾಗಲಿ ನದರಾ.

जगदीश फुलारी के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ आज का शैलस्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, ये दोनों ही समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। अब से कुछ देर पश्चात संध्या 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ये वाणी। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:45 पर और भक्ति संगीत कार्यक्रम का नन्ना उठाएंगे संध्या 6:41 पर। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुनेंगे संध्या 7:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत, रात्रि 9:30 पर आपके अनुरोध पर कार्यक्रम के अंतर्गत और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम में। मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस होगा रात्रि 8:00 और सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों

हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है 5:55 पर, 6:05 पर विचार बिंदु और उसके पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रातः 6:40 पर आप सुनेंगे आज की बात विविधा। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:50 पर। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे प्रातः 7:10 पर और कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे तारा सिंह लोधियाल और साथी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे प्रातः 8:30 पर और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जर आप सुनेंगे प्रातः 9:05 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे सबरंग कार्यक्रम में प्रातः 10:05 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरभार आप सुनेंगे प्रातः 10:35 पर।

कल प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 11:30 पर, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद होगा दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण। कल इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा यातायात नियमों को समझें और समझाएं। साथ ही एक और चर्चा आप सुनेंगे आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों से जुड़ी यादें। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार दोपहर 1:05 पर हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुगम संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर। कल दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे नाटक दृष्टिदान। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे, और किसान भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम खेती की बातें होगा दोपहर 2:30 पर। कल इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु मक्का की उन्नत प्रजातियां और वैज्ञानिक खेती। जानकारी देंगे डॉक्टर राजेश कुमार खुलबे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार होगा दोपहर 2:45 पर, और सभा के अंत में अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हमारी सायंकालीन सभा रोजाना की प्रारंभ होती है संध्या 5 बजे। संध्या 5:05 पर कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे गिरीश सिंह बरगली। कल संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती, और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले के जाएंगे। संध्या 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:45 पर, और भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे संध्या 6:41 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे संध्या 7 बजे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर, और इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस होगा रात्रि 8 बजे। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के ठीक 5:15 हुए हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी रेडियो मित्र राशिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी के आज के अंक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मानवता, सेवा और करुणा की, इन सब के उस महान संदेश की जो पूरी दुनिया को एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। दोस्तों आज का विशेष कार्यक्रम समर्पित है वर्ल्ड रेड क्रॉस या वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस को। हर वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये दिन हेनरी डोनांट के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। हेनरी एक महान समाजसेवी थे जिन्होंने युद्ध में घायल और पीड़ित लोगों की स्थिति देखकर मानव सेवा का संकल्प लिया। उनकी इसी सोच से रेड क्रॉस आंदोलन की शुरुआत हुई। दोस्तों रेड क्रॉस संस्था का मुख्य उद्देश्य है बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करना। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो, दुर्घटना हो या युद्ध जैसी कठिन परिस्थिति, रेड क्रॉस हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए आगे रहता है। ये संस्था रक्तदान शिविर आयोजित करती है, प्राथमिक उपचार की जानकारी देती है, घायल लोगों की सहायता करती है तथा स्वास्थ्य और जागरूकता अभियान चलाती है। दोस्तों रेड क्रॉस हमें सिखाता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाना ही सच्ची मानवता है। तो दोस्तों अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं वार्ता जिसका विषय है विश्व शक्ति में रेड क्रॉस की भूमिका और जिसकी वार्ताकार हैं काव्या जोशी।
1: यह दिन दुनिया भर में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटियों द्वारा संघर्ष, आपदाओं और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से प्रभावित लोगों को मानवीय सेवाएं और सहायता प्रदान करने में किए गए उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। रेड क्रॉस आंदोलन की स्थापना 1863 में हुई थी जब स्विस व्यवसायियों ने डुनेंट ने इटली में सोलफिरेनो की लड़ाई के दौरान घायल सैनिकों की पीड़ा देखी थी। चिकित्सा सहायता के बिना घायल और मरणासन्न सैनिकों को देखकर वे व्याकुल हो गए और उन्होंने स्थानीय स्वयं सेवाओं को संगठित किया ताकि वे घायल सैनिकों की सहायता कर सकें, चाहे वे किसी भी पक्ष के लिए लड़ रहे हैं। तब से रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी विश्व की सबसे बड़ी मानवीय संस्था बन गई है जिनकी उपस्थिति 190 से अधिक देशों में है। उनकी गतिविधियों में आपात राहत कार्य, रक्तदान अभियान, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण और संघर्ष प्रावसान और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से प्रभावित कमजोर समुदायों को सहायता प्रदान करना शामिल है। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर दुनिया भर के लोग मानवता की भावना का जश्न मनाते हैं और रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों को पहचानते हैं जो मानवीय पीड़ा को कम करने और सभी के लिए गरिमा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मूल आदर्श वाक्य था इंटर आर्म कैरिटास, युद्ध के बीच दान। इसने इस आदर्श वाक्य को संरक्षित रखा है जबकि अन्य रेड क्रॉस संगठनों ने अन्य आदर्श वाक्य अपना लिए हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड के फ्रेंच भाषी क्षेत्र में स्थित होने के कारण ICRC को इसके प्रारंभिक फ्रेंच नाम कामिंट इंटरनेशनल डेला क्रॉस डक्स रूस CRER के नाम से जाना जाता है। हालांकि ICRC को 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पैनिश। ICRC का आधिकारिक प्रतीक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस स्विस ध्वज का उल्टा है जिसके चारों ओर कामिंट इंटरनेशनल जिनेवा लिखा हुआ है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत लाल क्रॉस, लाल अर्धचंद्र और लाल क्रिस्टल प्रतीक सशस्त्र संघर्ष में सैन्य चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सा वाहनों और इमारतों पर लगाया जाना है। मूल प्रतीक जिनमें सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है, तटस्थ स्विट्जरलैंड के ध्वज का ठीक उल्टा है। बाद में इसमें दो अन्य प्रतीक जोड़े गए हैं, जो हैं लाल अर्धचंद्र और लाल क्रिस्टल। लाल अर्धचंद्र को रूस तुर्की युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य द्वारा अपनाया गया था। लाल क्रिस्टल को 2005 में सरकारों द्वारा एक अतिरिक्त प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। आधिकारिक मिशन वक्तव्य में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC एक निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र संगठन है, जिसका एकमात्र मानवीय मिशन युद्ध और आंतरिक हिंसा के पीड़ितों के जीवन और गरिमा की रक्षा करना है और उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय राहत कार्यों का संचालन और समन्वय भी करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और सार्वभौमिक मानवीय सिद्धांतों को बढ़ावा देना और मजबूत करने के लिए काम करता है। समिति के कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे कि पहला है युद्धरत पक्षों द्वारा जिनेवा सम्मेलनों के अनुपालन की निगरानी करना, दूसरा युद्ध क्षेत्र में घायल लोगों की देखभाल और नर्सिंग की व्यवस्था करना, युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार की निगरानी करना और बंदी अधिकारियों के साथ गोपनीय हस्तक्षेप करना, सशस्त्र संघर्ष में लापता व्यक्तियों की खोज में सहायता करना यानी खोज सेवा, नागरिक आबादी की सुरक्षा और देखभाल का आयोजन करना, युद्धरत पक्षों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। ICRC ने 1965 में 7 मूलभूत सिद्धांत तैयार किए थे। वे इस प्रकार हैं: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, एकता और सार्वभौमिकता।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिसका विषय था विश्व शक्ति में रेड क्रॉस की भूमिका, और वार्ताकार है काव्या जोशी।
2: मार्केट के बारे में क्या
3: परफॉर्मेंस का बोलो,
2: पूछे
3: मार्केट ट्रेंड देख,
2: सुनने में आएगी
4: आज की खबर देख,
5: पहले ही बोला ब्रो,
6: माय प्रेडिक्शन इज
7: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन,
6: मेरे दोस्त ने बोला
8: देवी जी की सुनो।
9: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सिने जगत की ओर, और आज सिने जगत में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी अलग पहचान, शानदार अभिनय और अनोखे अंदाज से दर्शकों का दिल जीता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अदा शर्मा की। 11 मई 1992 को मुंबई में जन्मी अदा शर्मा ने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म 1920 से की थी। इस हॉरर फिल्म में उनकी अभिनय क्षमता को काफ़ी सराहा गया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी के साथ साथ तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई। अदा शर्मा अपनी फिटनेस, डांस और अलग तरह के किरदारों के लिए भी जानी जाती हैं। फिल्म द केरला स्टोरी में उनके अभिनय ने दर्शकों का खूब ध्यान आकर्षित किया। अदा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोकप्रिय हैं और अपनी मज़ेदार वीडियोस तथा सकारात्मक सोच से युवाओं को प्रेरित करती हैं। दोस्तों, ये था अदा शर्मा के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं अदा शर्मा पे फिल्माया गया एक गीत।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: दोस्तों, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर और जानते हैं क्यों है आज का दिन खास इतिहास के पन्नों में। ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक एंटोनियो लवाइजर का आज ही के दिन 1794 में निधन हुआ था। दोस्तों, दरअसल सबसे पहले ऑक्सीजन गैस की खोज 1772 में स्वीडन के कार्ल विल्हम शीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। कार्ल शीले ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस प्राप्त की थी। हालांकि उन्होंने अपनी खोज को कहीं भी प्रकाशित नहीं किया। इसके ठीक 2 साल बाद 1774 में रसायन विज्ञानी जोसेफ प्रिस्ले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन किया और ऑक्सीजन प्राप्त की। 1775 से 1780 के दौरान एक और वैज्ञानिक एंटोनियो लेवाइजर ने ऑक्सीजन गैस की खोज में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने ही वस्तुओं के जलने और सांस लेने में ऑक्सीजन की भूमिका का पता लगाया था। ऑक्सीजन को एक रासायनिक तत्व के रूप में

में भी खोजे जाने का श्रेय एंटनी लोवाइजर को जाता है और आज ही के दिन 1794 में उनका निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1886 में अटलांटा के फार्मासिस्ट जॉन एस पेम्बरटन ने पहली बार कोका कोला का उत्पादन किया और उसकी बिक्री शुरू की। आज ही के दिन वर्ष 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की थी। आज ही के दिन वर्ष 1933 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ 21 दिन का उपवास शुरू किया था। दोस्तों, ये था हमारा आज का इतिहास। अब करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम चरण में बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और बताते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर, साथ ही सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम। दोस्तों, हमारा कल का पूछा गया प्रश्न था, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, जिसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। और सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार, पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे, ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चौसलिया, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, शास्त्री नगर बीच शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल, डोडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार तामोरिया। दोस्तों, इसी क्रम में जान लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। अगर जानते हैं आप इसका सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। सही उत्तर लिख भेजने वाले दोस्तों के नाम कल इसी कार्यक्रम में उद्घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त राशिका को अनुमति दीजिए आज के युवाणी कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुने सब श्रोतान के आपू दगड़ी मनी साग नमस्कार। दगड़ियों आज हम बात करनू विश्व रेड क्रॉस दिवस बारे में, जो आज एक दिन यानी 8 मई हूँ मनाई जा, जो युद्ध और आपदा वक्त घायल मन की सैनिकों और हमारा जतुले जरूरतमंद आम नागरिक छिन उन्हें लीजिए मदद करने वाले दुनिया का समन्वय ठुल मानवीय संगठन छू, जो इन्हें लीजिए समाज में मददगार वाल समाज हितकारी में समन्वय पहली अखिल हूँ। यह एक उद्देश्य स्वास्थ्य का रक्षाकरण और शांति के लिए काम करना छू। यो आंदोलन की शुरुआत हेनरी डुंटनल कर रही थी। उन्हर जन्म 8 मई हूँ यानी आज एक दिन मनाई जा। यह लीजिए यह दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस रूप में मनाई जा, जमे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना 1863 में है रही थी। यह दिन अनेक समाज हित वाल कार्य करी जानी, जमे रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट संस्थाएं युद्ध के दौरान घायलों की देखभाल, आपदा राहत, रक्तदान और प्राथमिक चिकित्सा जांच कार्यों में मदद कर। देवड़ी यो संगठन दुनिया के लगभग 190 से ज्यादा देशों में कार्य करने लग रो। भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छू, जैक अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होनी। रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रतीक चिन्ह सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस निष्पक्ष सेवा प्रतिनिधित्व करूँ। देखियो विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2026 का विषय मानवता में एकता छू, जो उन स्वयंसेवकों और कर्मचारियों के सम्मानित करूँ जो संकटक बखत समुदायों के दगाड़ ठाड़ रूनी, उनके बाहरी ना बल्कि उनार हिस्सा माननी। तेजी व जटिल और विभाजित होनी दुनिया में जहाँ और एक इतुसार कई एक उल्ट सुलट काम होनी, वह यो सोसाइटी करोना बे कामन के बदलूं और सबन कठिन वक़्त में आशा सम्मान और समर्थन प्रदान करनी। दगड़े विश्व रेड क्रॉस दिवस उनार अटूट प्रतिबद्धता के श्रद्धांजलि दगड़ दगड़ उन लोगों के याद करने ले अक्षर छू, जनूल दोहरक सेवा लीजिए अपन प्राणों आहुति दी। यह मानवीय कामनक बनाए धरना और उनार रक्षा करना आह्वान ले धरी और यह सुनिश्चित करते हुए कि तटस्थ स्वतंत्र और निष्पक्ष सहायता जरूरतमंदों तक जालो हो वहाँ पहुँचते रहो। संकट की स्थिति अलग अलग जाग पर अलग अलग है सकनी, लेकिन समर्थन एकजुटता और संपर्क आवश्यकता सार्वभौमिक छी। या इस भगत में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आवश्यकता, स्वयंसेवक अपन आसपासक मानसिक सहायता लीजिए अखिल होनी। विश्वभर में यह प्रतिबद्धता कई रूपों में समण हूँ। चाड़ में चाड़ रेड क्रॉसक स्वयंसेवक सूडान में संघर्ष व लगौनक लीजिए मजबूर परिवारों को समर्थ करनी और विस्थापन में अपन जीवन पुनर्निर्माण करते वक्त उनके बुनियादी जरूरतें हासिल करने में मदद करनी और हर परिस्थितियों में एक बात समान रहें, मैश यानी लोग एक दौरक मदद करनी, कंध ब कंध मिले हुए ठाड़ रोनी और यो सुनिश्चित करने की कोई ले संकट का सामना अकेले नहीं करूँ। मानवता में एकता यो सही अर्थ छू। देवड़े रेड क्रॉस आंदोलन मूल प्रश्न बहुत सरल हूँ, जब मनुष्य पीड़ा में हो तो क्या हम वीक पछाण जाति धर्म भाषा राष्ट्रीय या फिर राजनीतिक भेद मदद करना, या केवल वीक मानवीय अधिकार और गरिमा के देखिए। और रेड क्रॉस हम उनके बतू की सहायता का आधार मानव पीड़ा होचें, न कि कोई पक्षपात। यही भावना के व्यक्त करते हुए दुनिया में युद्ध, जलवायु आपदाएं, महामारी, खाद्य संकट, पलायन और सामाजिक असमानताएं बढ़ने लग रही। या समय में मानवीय संस्थाओं की भूमिका केवल राहत बात न बल्कि समाज का ही याद दिनों चुकी संकट में गरिमा और करुणा कह नहीं छोड़ी जा सकन। यह दिन हमारे बहुत सारे मन की रक्तदान लगन, यह दिन जाग जाग रक्तदान शिविर लगाई जा। देवड़ियो रक्तदान करण यह लीजिए जरूरी चुकी हम रेड क्रॉस दिवस दिन रक्तदान यह लीजिए करनू की जरूरतमंद मन की जान का हम बचा सकन। और रक्तदान एक बहुत ठुल दान छू, जो कहले हम जिंदगी कह के बदल सकनू और बचा सकनू। और यो रेड क्रॉस दिवस

अहम काम छू माता सेवा करना। तबे कई लहजा की रक्तदान महादान। यो दिन यो दिवस हमन के प्रेरित करूँ कि हम सब एक जुड़ा बेर जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लूँ। यो स्वयंसेवी नेटवर्क और नागरिक भागीदारी मिले बेर राज्य एक आपदा और स्वास्थ्य क्षमता के मजबूत कर सकनी। विश्व रेडक्रॉस दिवस यो संगठित मानवता एक उत्सव छू। तो जगड़े यो तो अब तक कुछ बातचीत अघिल आप लोग करूँ मनोरंजन और आपको सुनानू शंकर उप्रेती और दीवान कनवाला का ही हो कुमाऊनी लोकगीत।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता और लखन सुनो, गिरी सिंह बरगिली गाइयो लोकगीत और अब बात करनो आधुनिक युग में डिजिटल क्रांति के प्रभाव बारे में, जेल हम कई तरीकल प्रभावित कर रहो। डिजिटल क्रांति सूचना तक पहुँचे जगह ऑनलाइन विशाल ज्ञान आसानी में उपलब्ध है जा। डिजिटल क्रांति संचार में सुधार कर रहो। डिजिटल उपकरण और सेवाओं दैनिक काम के आसान बढ़ा लो और सामाजिक जुड़ाव और वैश्विक समुदाय के निर्माण में बढ़ावा देने लग रहो और दगड़े आर्थिक विकास के लिए इनमें बढ़ावा मिल रो। दगड़े अर्थव्यवस्था में नई उद्योग और नौकरी मिले ये बढ़ावा मिलो। शिक्षा बहुत ज़्यादा इके सुलभ बढ़ा। ऑनलाइन शिक्षण और डिजिटल संसाधन शिक्षा के आसान बोण में यो मदद करूँ। यह समाज में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा दूँ और सामाजिक आंदोलन के सुविधाजनक बढ़ूँ। यह डिजिटल कला क्षेत्र में नई दुनिया के जन्म दूँ और पारंपरिक माध्यमों सीमाओं के तोड़वीर रचनात्मक नई आयाम खोजने में यो मदद करूँ और कृषि में नवाचार देखने मिलूँ। पुस्तकालय में डिजिटल डोमेन में बदलाव मानव दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव छू। देखो यश मानी जाए कि 19वीं सदी तक सदी अंत तक मैं चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन जो आधुनिक कंप्यूटर अवरुदूची और टेलीग्राफक आविष्कार में डिजिटल क्रांति के एक नई गति देखने दिनों। जब पर्सनल कंप्यूटर आविष्कार भो तो डिजिटल संचार आर्थिक कारणों में व्यवहार में रूप यह अगुई और यह क्रांति मतलब एनालॉग तकनीक के डिजिटल प्रारूप में बदलाव छी। यह मूलक प्रतिकृतियों बनून संभव हुई छी। जुलाई 2015 में शुरू करी गई डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम छू। जय गुरु।

देश भारत के डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलण छी। भारत दुनियाक सबनभे ठुल और सबनभे तेजी बढ़नी डिजिटल बाजारों में एक मानी जा। निर्णायक सरकारी कार्यवाही और निजी क्षेत्रों का नवाचार तेजी पे ठुल पैमान पर डिजिटल अपनौण के बढ़ावा देने लग रहा। डिजिटल क्रांति एक ठुल पैमान पर समाज के काफी लाभ पहुँचने लग रहे, लेकिन यह दगाड़े कई चिंता ले पैदा ही छिन। संचार और सूचना साझा करने की ताकतक बहुत विस्तार है, उनके यह एक यश परिदृश्य सीमित कर रहे, जहाँ सामूहिक निगरानी एक सामान्य बात बढ़ गई। तकनीकी प्रगति दगाड़ डिजिटल क्रांति एक नई रोजगार कौशल मांग पैद कर रही, जो भारतक सॉफ्टवेयर एक महाशक्ति रूप में जानी जा। और दगड़ियों, अखिल आप लोगों का मनोरंजन और आपको सुनानु गोपाल सिंह चम्याल और उन्हें दगड़ी ने गाइयो लोकगीत।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
2: Yes, rupees 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: श्रोता आप सब जान सा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी जिंदगी में कतु महत्व छू। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं या कानूनक आधार पर संभव ना, यह हमारे सबनक नैतिक जिम्मेदारी छू। हम अपन दैविक जीवन में या आदतों के अपने पर जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, हम इनके प्लास्टिक के कम से कम उपयोग में लूँ। पड़ जल संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक छू, किले कि पानी के बिना जीवनक संभव ना, किले कि बढ़ते हुए प्रदूषण और जनसंख्या के देखते हुए पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो नंदिन के पर्यावरण महत्ता समझण जी स्कूल में ले आजकल पर्यावरण निबंध या स्थानीय तैयार करना के लिए कई इनके जागरूक करने जानो, किले कि विकास और प्रगति कारण हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन जास नित्य नई निर्माण नई कारखाना खुण सब धरती स्थिति के गंभीर रूप प्रभावित करने लगी। जमे पेड़ों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सब पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता के बढ़ावा देनी। हमारे आसपास एक हर चीज पर्यावरण में शामिल छिन। पर्यावरण संरक्षण आज के वक्त में हमारे सब ने भी ठूल चुनौती बढ़ गई, किले कि अगर हमारे पर्यावरण संतुलित निरोलो तो पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है सकन। दगड़ियों पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक छू, किले कि हम सिद्ध रूपल पर्यावरण में जुड़ी रहनू। हम समुन के जीवन यात्रा पूरी तरीके पर्यावरण पर आश्रित छू। स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य लिए बहुत आवश्यक हूँ। अगर हमारे पर्यावरण दूषित हलो तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ल, जमे श्वास संबंधी बीमारी, किडनी रोग, हृदय रोग आदि न खतरे बढ़ी रहल। देखो हमारे प्राकृतिक संसाधन

सीमित होनी और पर्यावरण संरक्षण व हम प्राकृतिक संसाधनों समुचित उपयोग कर सकन और उनके भविष्य दगड़ने लिए सुरक्षित ले धर सकन। देखो प्लास्टिक आज संपूर्ण पर्यावरण एक बहुत ठूल समस्या पड़ गई, जे अगर बखत रहते समाधान निकल गए तो यह हमारे जीवन लिए एक ठूल संकट पैदा करोल, क्योंकि प्लास्टिक मनखी द्वारा ठूल रूप में प्रयोग करे जाने वाले पदार्थ छू और आज वर्तमान बगत में भारत तक दगाड़ दगाड़े पुरदुनी में सिंगल यूज प्लास्टिक हर घर में उपयोग करे जाने लग रहो, यानी इस्तेमाल करे जाने लग रहो, जमें पानी की बोतल, डिस्पोजल खाने वाले पदार्थ, फल सब्जी लेने वाले थैल सब सिंगल यूज प्लास्टिक का बड़ी हुई छीन और यहाँ तक कि पाकी हुई गर्म खाने प्लास्टिक मणि पैक कर भी हमारे होटल रेस्टो और जो आजकल ऑनलाइन खाना डिलीवरी दिन जान लाग रही उल यह बहुत सारा उपयोग करने लाग रही। यो प्रकारक प्लास्टिक एक बार प्रयोग कर भी उसे फेंक दीजा और जो हमारे पर्यावरण के नुकसान पहुँचो जो 500 साल तक ले नष्ट नहीं हों और यो माट में पानी में मिल भी उनके प्रदूषित करूँ जो पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ाते रहूँ। यह जरूर पर हानिकारक गैस इम्बटिक निकलूँ जो मनखी सहित सभी जीव जंतुओं स्वास्थ्य पर ले बुरा असर पड़ूँ। देखो जो हमारे जलीय जीव होनी प्लास्टिक उन्हें लीजिए जानलेवा साबित हूँ। यह अगले जी आज एक संकल्प हम उनके लेना चाहें कि प्लास्टिक के पूर्ण तरीके बैन करना हर संभव प्रयास करी जाओ। अगर हम पर्यावरण ख्याल धरू तो सुनिश्चित तौर पर हमारे पर्यावरण हमारे ख्याल धरल। और देखो अब अगिल आप लोगों का मनोरंजन आप लोगों को सुनानू नीरज सिंह चुभाल गई लोकगीत।

श्रोताओ, नरेंद्र सिंह नेगी गाइयो गढ़वाली लोकगीत दगर आज उत्तरायण कार्यक्रम इतिगे संपन्न हूँ भो फिर भेंट करन। तब तक लीजिए अभू दगड़ी मनी सागर दियो आ गया। नमस्कार।

0: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का लोकार्पण किया। कहा, उच्च हिमालय क्षेत्र में अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ में कैलाश उत्सव का शुभारंभ करने के साथ ही 165 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर बागेश्वर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र के देहरादून में वॉकथॉन का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ धाम में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का लोकार्पण किया। यह अस्पताल स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस उच्च हिमालय क्षेत्र में इस अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष प्राथमिकता दे रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
2: ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड के इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। इस विस्तार के बाद केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, स्थानीय निवासियों को आपातकाल में ये संजीवनी का कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जैसे संस्थान हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े

0: व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के विकल्प रही संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक बेहतर सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ स्थित लक्ष्मण सिंह महर राजकीय महाविद्यालय में कैलाश उत्सव का शुभारंभ करने के साथ ही 165 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सीमांत क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की।
2: आज महाविद्यालय में शानदार कैलाश उत्सव किया गया है छात्रों और छात्राओं के बीच में, और अनेक क्षेत्रों में आज हमारे इस सीमांत क्षेत्र से छात्र छात्राएं आगे बढ़ रहे हैं, अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उसको हमारे नौजवान आज अपना रहे हैं और उनको जड़ों से जुड़ रहे हैं। महाविद्यालय हमारा काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए कुछ जरूरी जो आगे काम होने हैं उन कामों को लेकर भी मैंने वहाँ पर ऑडिटोरियम बनाना हो, हॉल बनाना हो या अन्य संकाय के कक्षों का निर्माण करना हो या पाठ्यक्रम ठीक प्रकार से चले उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं उसकी मैंने वहां पर आज घोषणा भी की है।
1: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आज अल्मोड़ा जिले के हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोमेश्वर में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र छात्राओं की सूची में छात्राओं की बढ़ती संख्या शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की निरंतर प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज बागेश्वर जिला कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी आकांक्षा कौंडे ने बागेश्वर रेडक्रॉस द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि स्वयं सेवकों की निस्वार्थ सेवा भावना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
4: आज विश्व रेडक्रॉस दिवस में हम लोगों ने सम्मान समारोह जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। जो हमारी बागेश्वर जिले की सोसाइटी है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और कोई भी चाहे आपदा हो या कोई भी ऐसे समस्या हो उसमें हमारे रेडक्रॉस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत एक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और कभी कभी देखा गया दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। चाहे इसके पहले हमारी पौशारी की आपदा हो या इसके अलावा और भी कोई आपदा आई हो, तो उसमें अच्छा काम किया है जिन लोगों ने उनको हमने सम्मान किया है। कुछ हमारे दिव्यांगजन हैं उनको भी हम लोगों ने सम्मान किया है। कुछ हमारी महिलाएं जो इस सोसाइटी से जुड़ी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको भी सम्मान किया गया है। और आशा है इसी एक्टिविज्म के साथ, इसी तरह सक्रियता के साथ हमारी जो सोसाइटी है वो आगे भी काम करती रहे।
1: रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण ने कहा कि संस्था के स्वयंसेवी लगातार मानव पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, और भविष्य में भी वह यह सेवा कार्य इसी तरह जारी रहेगा।
5: आज हमारे द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा जो समाज सेवा के लिए लगातार अच्छा कार्य जिनके द्वारा किया गया उनको आज सम्मानित किया गया, और जिलाधिकारी महोदय ने भी बागेश्वर रेडक्रॉस की काफी सराहना की और काफी हमारे कार्यों को सराहा। और जब अधिकारी इस प्रकार से अपना अमूल्य समय देते हैं और कार्यों को सराहते हैं तो अवश्य हमारे सदस्यों और कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन होगा और वो दुगनी गति से और दुगनी मेहनत से काम करेंगे।
1: आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र देहरादून से नेहरू कॉलोनी तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। चंपावत के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में आज जिला स्तरीय कौशलम प्रदर्शनी आयोजित की गई। जिले के चारों विकास खंडों के चयनित 22 विद्यालयों में से 17 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने नवाचारी मॉडल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ कमल सिंह गहतोड़ी ने बताया कि छात्रों

0: मैं उद्यमशीलता मानसिकता को विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रदर्शनी में उद्योग विभाग, नगरपालिका और विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों ने छात्रों का मार्गदर्शन किया।
1: विगत 4 वर्ष से हमारे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल है, जो विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों में व्यावसायिक दृष्टिकोण पैदा कर रहा है और उनमें उद्यमशील मानसिकता का विकास कर रहा है। प्रतिवर्ष हम जनपद में उनके बनाए हुए उनके आइडियाज को डेवलप करते हुए उनका एक दर्शनी यहाँ पर आयोजित करते हैं, जिसको कौशलम एक्सपो नाम देते हैं। उसमें बच्चे अपने विभिन्न व्यावसायिक आइडियाज को प्रोटोटाइप के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और मार्केट से कैसे उसको संबद्ध किया जाए। तो ऐसे में हमने बच्चों को व्यावसायिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, उद्यमशील मानसिकता के विकास के लिए इस मुहिम में जोड़ा है।
0: राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ की छात्रा स्नेहा बोहरा ने बताया कि उन्होंने गौमय प्रतिमय मॉडल का प्रस्तुतीकरण किया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक वस्तुओं को पर्यावरण से जोड़कर एक स्टार्टअप का निर्माण करना है।
2: हमने कौसम कार्य के अंतर्गत अपने प्राकृतिक संसाधन गौमय प्रतिमा यानी गाय के गोबर, मिट्टी, इमली बीज का पाउडर और इसके प्रीमिक्स को मिलाकर पहले हमने ट्रायल के रूप में एक दिया बनाया था, जो बहुत अच्छा रहा। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उद्यमशील बनाने के लिए हमने मूर्तियां बनाई और कुछ हस्तनिर्मित चीजें भी बनाई थी। और इसका उद्देश्य हमारा यह रहा कि हम कैसे अपने पारंपरिक चीजों, कैसे हम इसमें हम अपने रोजगार को कैसे जोड़ रहे हैं, इससे हम लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं अपने साथ और इससे हम कैसे लाभ कमा रहे हैं।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का लोकार्पण किया। कहा, उच्च हिमालय क्षेत्र में अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ में कैलाश उत्सव का शुभारंभ करने के साथ ही 165 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर बागेश्वर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र में वॉकथॉन का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने भक्ति वंदन सुना। आइए भक्ति संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं चित्रा सिंह के स्वर में ये भक्ति गीत।

चित्र सिंह के स्वर में अभी आपने भक्ति वंदन सुना। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के ठीक 6:50 हुए हैं। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार गढ़वाली में हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे।

0: पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल को लोकार्पण का ही। कृषि मंत्री गणेश जोशी बोली कि असम का चाय उद्योगों का अनुभव और आधुनिक तकनीकों को अध्ययन करी उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन थे नए दिशा देने को कार्य करे जालू। केदारनाथ धाम यात्रा का दौरान सुरक्षित स्वच्छता व्यवस्था थे लेके रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त, कचरा फैलान वालों का खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे जाली। और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ का उपलक्ष्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वॉकेथॉन को आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ धाम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल को लोकार्पण काई। यो अस्पताल स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित करे जालू। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला ये उच्च हिमालय क्षेत्र में यो अस्पतालों को संचालन स्वास्थ्य सेवाओं थे नए मजबूती प्रदान करलू। उन बोली कि यो अस्पताल यात्रा का दौरान श्रद्धालुओं का दगड़ा दगड़ी स्थानीय नागरिकों को भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध हालू। मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य सरकार केदारनाथ धाम यात्रा थे सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने का वास्ता स्वास्थ्य सेवाओं थे विशेष प्राथमिकता देनी च ताकि श्रद्धालुओं थे कै भी प्रकार की असुविधा को सामना नहीं करन पाड़ू।
1: ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड के इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। इस विस्तार के बाद केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, स्थानीय निवासियों को आपातकाल में ये संजीवनी का कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जैसे संस्थान हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

0: पहुंचाने के विकल्प इस संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं।
1: कृषि मंत्री गणेश जोशी आजकल असम दौरे पर छी। मूल असम का बरपाथार स्थित चाय बागानों को दौरा करी वख की उत्पादन क्षमता, प्रसंस्करण प्रणाली और विपणन व्यवस्था को विस्तार से निरीक्षण काई। मूल स्थानीय चाय उत्पादकों, निर्यातकों और विशेषज्ञों का दगड़ी बैठक करी उत्तराखंड में चाय उत्पादन थे बढ़ावा दीण, गुणवत्ता सुधरण और विपणन व्यवस्था थे मजबूत बनाने का संबंध में सुझाव प्राप्त करी। कृषि मंत्री ने बोली कि उत्तराखंड में चाय उत्पादन की अपार संभावना छी और राज्य की जलवायु उच्च गुणवत्ता वाली चाय खुणी अनुकूल छी। विश्व रेड क्रॉस दिवस का अवसर पर आज बागेश्वर जिला कार्यालय में सम्मान समारोह को आयोजन करी गई। ये दौरान समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दीन वाला लोगों थे सम्मानित करी गई। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बागेश्वर रेडक्रॉस द्वारा करे जान वाला सेवा कार्य की सराहना कर दफे बोली कि स्वयं सेवियों की निस्वार्थ सेवा भावना समाज में सकारात्मक बदलाव ल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभांदी।
2: आज विश्व रेड क्रॉस दिवस में हम लोगों ने सम्मान समारोह जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। जो हमारी बागेश्वर जिले की सोसाइटी है बहुत ही अच्छा काम कर रही है और कोई भी चाहे आपदा हो या कोई भी ऐसे समस्या हो उसमें हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत एक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और कभी कभी देखा गया दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। चाहे इसके पहले हमारी पौशारी की आपदा हो या इसके अलावा और भी कोई आपदा आई हो तो उसमें अच्छा काम किया है जिन लोगों ने उनको हमने सम्मान किया है। कुछ हमारे दिव्यांगजन है उनको भी हम लोगों ने सम्मान किया है। कुछ हमारी महिलाएं जो इस सोसाइटी से जुड़ी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको भी सम्मान किया गया है और आशा है इसी एक्टिविज्म के साथ इसी तरह सक्रियता के साथ हमारी जो सोसाइटी है वो आगे भी काम करती रहे।
1: रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवारण बोली कि संस्था का स्वयंसेवी लगातार मानव पीड़ा थे कम करने का उद्देश्य से समर्पित भाव से कार्य करना चीन और भविष्य में भी यो सेवा कार्य इन्नी जारी रालू।
3: आज हमारे द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा जो समाज सेवा के लिए लगातार अच्छा कार्य जिनके द्वारा किया गया है उनको आज सम्मानित किया गया और जिलाधिकारी महोदय ने भी बागेश्वर रेडक्रॉस की काफी सराहना की और काफी हमारे कार्यों को सराहा। और जब अधिकारी इस प्रकार से अपना अमूल्य समय देते हैं और कार्यों को सराहते हैं तो अवश्य हमारे सदस्यों और कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन होगा और वो दुगनी गति से और दुगनी मेहनत से काम करेंगे।
4: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन केदारनाथ धाम यात्रा का दौरान स्वच्छता व्यवस्था थे लेके सख्ती बढ़ आयल। जिलाधिकारी विशाल मिश्रन बोली कि यात्रा मार्ग नदी और पहाड़ियों में कचरा करण वालों का खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे जाली। प्रशासन का अनुसार यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने का वास्ता 400 से ज्यादा सफाई कर्मी सीतापुर से केदारनाथ धाम थे लगातार सफाई अभियान चलाना छिन। अकेला गौरीकुंड क्षेत्र में 110 सफाई कर्मियों की तैनाती कहीं च। सोनप्रयाग में प्लास्टिक कचरा थे कॉम्पैक्ट करना खुणी विशेष मशीन लगाई छी। प्रशासनल यात्रा मार्ग में 600 से ज्यादा डस्टबिन लगाए छी और पर्यावरण मित्रों की तैनाती करी नियमित सफाई और कचरा संग्रहण की व्यवस्था कई छी। ऊखीमठ का उप जिलाधिकारी अनिल रावतल श्रद्धालुओं से प्लास्टिक और अन्य कचरा निर्धारित कूड़ेदान में ही डलने की अपील कई छी।
5: सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से लगभग 400 के आसपास कार्मिकों को स्वच्छता और सफाई के लिए लगाया गया है जिनमें से मात्र गौरीकुंड में ही 110 कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। साथ ही शौचालय यात्रा मार्ग की सफाई और अन्य कार्यों का संपादन किया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम पधारने वाले सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने कूड़े का समुचित निस्तारण करने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और जिला प्रशासन को स्वच्छता और सफाई के दृष्टिगत अपना आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
1: वकी केदारनाथ यात्रा पर आण वाला श्रद्धालुओं की सफाई व्यवस्था थे लेके जिला प्रशासन की सराहना कनी छिन।
6: यहाँ पर जो टॉयलेट्स की सुविधा है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सफाई हो रही है और सब काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सफाई मिलेगा पर बहुत अच्छा है। जय श्री केदार।
1: आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ का उपलक्ष्य में आज सुबेर आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून से नेहरू कॉलोनी थे वॉकेथॉन को आयोजन करी गई। ये दौरान आकाश

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आदर्श वाक्य का दगड़ी आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई छे। यह देश को सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम छे, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन का अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों को प्रसारण कर दे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या आज अल्मोड़ा जिला का हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह में शामिल हुई। ये अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला मेधावी छात्र छात्राओं थे प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित कराई। उन्होंने बोली कि मेधावी छात्र छात्राओं की सूची में छात्राओं की बढ़ती संख्या शिक्षा का क्षेत्र में बेटियों की निरंतर प्रगति को प्रमाण च। रुद्रप्रयाग जिला का अगस्तमुनि क्षेत्र में एक दा फिर बाल विवाह को मामला समीण आण पर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की तत्परता से एक नाबालिग बालिका को भविष्य सुरक्षित करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर बाल विवाह की सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम आज सुबह डांगी पठालीधार गाँव पहुंची, जब एक नाबालिग बालिका को सगय हूण वल छाई। अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल को लोकार्पण कराई। कृषि मंत्री गणेश जोशी बोली कि असम का चाय उद्योगों का अनुभव और आधुनिक तकनीकों को अध्ययन करी उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन थे नए दिशा देने को कार्य करे जालू। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान स्वच्छता व्यवस्था थे लेके रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त, कचरा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे जाली और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ का उपलक्ष्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वैकेतन को आयोजन। ये का दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। अब ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनिए सभी श्रोताओं के, मैं कृष्ण सिंह लटवाला नमस्कार। श्रोताओं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में दुधारू पशुनक पालन बहुत पहले वे करी जा और कहने के हमारे जो पर्वतीय अर्थव्यवस्था छो वह एक रीढ़ एक हम कह सकनू कि लेकिन हम खेत पैत करनू और खेत पैत के दगर दगरे पशुपालन के लिए अपन आर्थिक व्यवसायिक रूप में हम अपनो लग रू। तो इसमें हमन के जब हम दुधारू पशुनक बात करनू और दुधारू पशुपालनक लाभक बात करनू तो हमन के कुछ बातन बहुत ध्यान जो दिन महत्वपूर्ण है जा। स्वतः क्या कि हमारे भारत में बहुत प्रकारक दुधारू जानवर जो सन उपाई जानी दुग्ध पशुपालन हमारे जी बहुत एक लाभदायक साबित है के लिए कि यह हमारे परिवारक लिए जी सबसे बहुत घरेलू जरूरत जो छो वो हमारे इतपुर है जी। और अपन परिवारक लिए जी अगर हम भोजनक उत्पादनक बात करूँ तो हमारे जो एक महत्वपूर्ण यह हूँ कि हमारे जो गार्डन हूँ बेटी के साल भरक भोजन उगुण के बाद जो हमारे प्राथमिकता है जी वो है जी दोहर दूधे। तो इसमें हमन के जो दूध छ एक लीजिए एक मांग जो छ ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई।

कि मांगे जो पूर्ति करने के लिए हमन के जो दुधारू पशु छन वो हम पालनू और अपन जो व्यवसाय छे ओके करनू और अपन परिवारक लिए पालन पोषण करनू और जो दहर लोग छन मनखी छन उनर जरूरत के लिए हम पूर करनू। तो इसमें हमारे जो किसान भाई बहनी छन अगर वो पशुपालन करने के बारे में सोचने लग रही तो हमन के कुछ बातों का ध्यान जो अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पशुपालन जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ छू और इनमें दूध खाद और अन्य कृषि उत्पादन हमन के प्राप्त होनी। तो यज्ञ पशुपालन में लोग जो छन गोर भैंसों पालन जो छे वो ज़्यादा करनी। तो अगर हम यज्ञ दुधारू पशुओं की बात करनू तो अगर हम जब इन्हें के हम खरीद लिनू तो सबसे पहले तो हमन के पशुओं की नस्ल के बारे में जानकारी जो छो वो हमन के प्राप्त करन चाहिए, किले कि पशुओं उत्पादन क्षमता उन्हें नस्ल पर निर्भर करी। तो अगर हम उन्नत नस्ल गोर भैंस पाउल तो हमन के जो छो उत्पादन जो छो ज़्यादा मिलल। पशुनक दूधक उत्पादन क्षमता उनर आयु पर निर्भर करी। एक लीजिए गोर भैंस खरीदते समय हमन के उनर आयु विशेषक जो छो ध्यान हमन के दिन चाहिए, कि लेकिन ज़्यादा युवा या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़ पशु का अगर हम खरीद लो तो उनर देखभाल जो छो हमन के ज़्यादा करना पड़े और यह कह हमन के जो दूध छे उन्हें कम मिलल। तो गोर भैंस खरीदने के लिए हमन के तीन बलिवे छः साल उम्र सबसे जो उम्र छे वही में भल मानी जी। सदा अगर हम प्रजनन क्षमता की बात करूँ तो हमारे जो दुधारू पशु छन उन्हें प्रजनन क्षमता के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान हमन के देना चाहिए, किले कि यह दूध उत्पादन क्षमता ले प्रभावित हैं। और दुधारू पशु ने खरीदारी करते समय दूध उत्पादन क्षमता जरूर हमन के ध्यान देना चाहिए। पशुपालन पिछाड़ी 6 महीने दूध उत्पादन के बारे में हमन के जानकारी जो लेना चाहिए। यह के देखें पशुपालक अपन क्षेत्रक जलवायु और वातावरण के अनुसार है पशुओं के नस्लों के चयन हमन के कारण चयन जल पशुओं के लिए कोई ना प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत है वो नहीं हो। और दुधारू पशुओं के खरीदते वक्त हमन के पशुपालक के उन्हें दूधक मात्रा गुणवत्ता की जाँच ले जो है जरूर करें चयन, किले कि दूधक जो फैट SNF हों और अन्य पोषक तत्व हैं उन्हें बारे में हमन के जानकारी जरूर हो चैन। और यह के देखें सबसे ठूल बात जो है पशुओं का व्यवहार वे पर हमन के विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर शांत स्वभाव खोलो तो हमन के ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा। और यदि पशु जैसे हमारे आक्रमण और चिड़चिड़ा हूँ तो उनका पालन जो है बहुत ज़्यादा कठिन है जा। तो इसमें जो किसान भाई बहनी छिन अगर वो पशुपालन करना चाहनी या एक भल लाभ उठाना चाहनी तो उनके ये जो बात हम उनके बताएँ तो यह एक शुरुआत करने वक्त में उनके ये जो ध्यान छे वो दे सकने। यह के देख रहे पशुपालन आजक वक्त में एक महत्वपूर्ण उद्योग लहबो, क्योंकि हम खेती के दगड़ दगड़े एक समेकित कृषि के रूप में अगर हम देखूँ तो पशुपालन लगे एक विभिन्न एक महत्वपूर्ण घटक छू। तो इसमें हमारे जो किसान भाई बहनी पशुपालन करने लग रही उनके निश्चित रूप में व्यापक ध्यान रखबेर अवश्य ज़्यादा फायदे उनके हल। तो कार्यक्रम में अगिल हम आपको देखे बातचीत करते रूल एल आपके सुनू ललित चंद्र पांडे गई यो कुमाऊनी लोकगीत।

0: सुबह कार्यक्रम में अगे सुनो फलोत्पादन बागवानी एक व्यवसायिक दगे सब्जी उत्पादन करने वाले कृषक तारा सिंह डंगवाल दगे यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में आज हमारे साथ हैं श्री तारा सिंह डंगवाल जी, ग्राम सुनकिया पोस्ट भटेलिया विकासखंड धारी जिला नैनीताल से आप हमारे साथ जुड़े हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही है सर कि आपके पास कितनी जमीन है?
2: हमारे पास ये 3 एकड़ जमीन है खेती के लिए।
1: जी, तो अपनी जो जमीन है उसमें क्या लगा रखा है?
2: हमारा ये मूल रूप से जो धारी ओखलकांडा रामगढ़ का ये क्षेत्र है, तो ये जो है विशेषकर फल पट्टी के रूप में जाना जाता है
1: जी।
2: और हमने अपने खेतों में ज्यादातर हमारे जो भूमि है उसमें फलदार वृक्षों से आच्छादित है
1: जी।
2: और इसमें हम बहुत कम मात्रा में कहें कि एक ये फल ये सब्जी का उत्पादन काफी कम मात्रा में करते हैं और विशेष तौर पर फलों का उत्पादन करते हैं हम
1: जी। तो कौन कौन से फल जो है वो आपने लगा रखे हैं?
2: वर्तमान समय में जो फलदार पौधों की अगर हम बात करें तो इसमें हमने पुलम लगा रखा है, सेंट्रोजा एक

0: जाति होती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में खुबानी के पौधे और सेब के पौधे, हमारा एक नई वैरायटी चली हुई है डेलिशस, हालांकि वो पुरानी है लेकिन उसी को आजकल कुछ हम कह सकते हैं कि नई खोज के तौर पर एक अच्छी फलत उसमें आ रही है। तो एक नया डेलिशस का हमारे क्षेत्र में विशेषकर आजकल बोलबाला है, तो वो पेड़ हमने लगा रखे।
1: तो प्लम में आपने सेंट्रोजा लगा रखा है और सेब की नई प्रजाति जो डेलिशस सेब है उसकी प्रजाति आपने लगा रखी है। कितने पेड़ आपके पास तकरीबन होंगे इस वक्त पर?
0: इस समय हमारे पास लगभग 300 पेड़ सेंट्रोजा पुलम के, और इसके अलावा 20-22 पौधे खुबानी के, और सेब के पौधे वही है, कोई 50-60 पौधे सेब के होंगे जो कि अब पेड़ बन चुके हैं।
1: जी, तो ग्रीष्म काल चल रहा है और पेड़ों में अभी फल जो है लग चुके होंगे, है ना? तो
0: जी
1: क्या कहते हैं, जो ये फल अभी आपके पेड़ों में लगे हैं, इनकी देखभाल आप कैसे करते हैं, इनका प्रबंधन आप कैसे करते हैं?
0: हम जो ये हमारे पेड़ों में आजकल फल लग चुके हैं, तो इनका सबसे बड़ा एक हमारे क्षेत्रों में हम कहें तो आजकल बंदरों का काफी आतंक हो रहा है विगत 2-3 वर्षों से।
1: जी
0: पहले बंदरों का आतंक हमारे क्षेत्रों में नहीं था, तो बंदरों का आतंक हो चुका है, तो थोड़ा उनकी जो उनसे हम सुरक्षा के लिए कहें कि अपने अपने खेतों की रखवाली स्वयं ही करनी पड़ती है हम लोगों को।
1: जी
0: और इसके अलावा ओलावृष्टि से बचाव के लिए कहें तो जैसे कुछ आजकल कुछ जाली वगैरह भी पेड़ों के ऊपर लगाए रहते हैं कुछ लोग, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि हमारा चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो इतना साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन कुछ लोग जाली का भी प्रयोग किया किए रहते हैं, लेकिन हम वही परंपरागत तरीके से ही प्रकृति पर निर्भर इसी तरह से किया करते हैं सर।
1: जी वैसे अगर आपके पास संसाधन है तो आप एंटी हेलनेट का प्रयोग कर सकते हैं, है ना?
0: जी।
1: तो ये तो फल उत्पादन की आपने बात करी।
0: जी।
1: फल उत्पादन के अतिरिक्त आप अन्य अपने खेतों में क्या-क्या लगाते हैं, क्या करते हैं?
0: हम व्यावसायिक तौर पर जो सब्जी का उत्पादन करते हैं, तो इसमें हम विशेष तौर पर आलू, मटर, गोभी और इसी तरह की जो अन्य कुछ नकदी फसल हैं इन्हीं का हम विशेषकर उत्पादन करते हैं।
1: जी
0: और विशेषकर हम अपने क्षेत्रों में कहीं तो विशेषकर बागवानी का ही है, लेकिन कम मात्रा में, जहाँ पर ये सिंचित क्षेत्र है, जहाँ पर नदी के आसपास घाटे वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर विशेष तौर पर सब्जी उत्पादन होता है, लेकिन हम चूंकि असिंचित क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं तो हम बरसात पर आधारित ही है हमारी खेती। जो ये फल व्यावसायिक में आपसे बात कर रहा हूँ, व्यावसायिक तौर पर जो सब्जी उत्पादन का,
1: जी तो अभी आपने कहा कि आलू मटर आपने लगा रखा है, तो मटर तो अभी तोड़ने की का वक्त आ चुका है, तो कितना मटर आपका हुआ इस बार?
0: विगत वर्ष तक हम जो हमारा सिंचित क्षेत्र में सब्जी उत्पादन के लिए भूमि हमने अलग से एक चयनित कर रखी है, तो उसमें हम आलू का उत्पादन किया करते थे, तो विगत वर्ष चूंकि भीषण गर्मी पड़ी और काफी नुकसान हुआ था आलू में, तो इस साल हमने परिवार में विचार विमर्श करके ये निष्कर्ष निकाला कि इस साल मटर की खेती की जाए, तो
1: जी बहुत बढ़िया।
0: इत्तफाक से इस वर्ष काफी अच्छी वर्षा भी हुई हमारे क्षेत्रों में और बहुत अच्छा मटर का उत्पादन हमारा हुआ है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मात्र हम अभी पहली तुड़ाई कर रहे हैं और काफी अच्छा मुनाफा हमें मिल रहा है, 40 रुपया किलो उसकी मार्केट में बिक्री जा रही है और लगभग 40 बोरी मटर हम मार्केट में भेज चुके हैं सर।
1: ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपको अच्छी आय मटर से भी हो रही है
0: जी
1: ना?
0: जी जी
1: तो अगर हम बात करें, मटर तो आपने इस बार ले लिया, अभी और आशा है आपको कि और मटर आपका होगा क्योंकि ये पहली तुड़ाई है। तो जब
0: जी
1: ये
0: जी
1: मटर की आप तुड़ाई कर लेंगे तो उसके बाद खेत में अन्य क्या फसल आप लेंगे, कौन सी सब्जियां आप लगाएंगे?
0: इसके बाद हम जो हमारा सब्जी उत्पादन के लिए जो क्षेत्र है उसमें हम सोच रहे हैं कि आधे जो आधा क्षेत्र है उसका, तो उसमें हम गोभी का जो कि हमने अभी पौध तैयार कर ली है और उसको हम जो ही अच्छी जो हमारी जो तुड़ाई होगी उसके बाद जो बारिश होती है तो उसके बाद हम उसका हम रोपण कर देंगे खेतों में। और उसके अलावा जो आधा हमारा क्षेत्र रहेगा तो उसमें मक्का और ये राजमा का हम इस साल बुआई करने की सोच रहे हैं सर।
1: बहुत बढ़िया। एक आपकी जानकारी के लिए वैसे मैं बताऊं, आपने बंद गोभी की खेती कर रखी है, वैसे बंद गोभी की खेती

0: पूरे साल भर में करी जाती है। और ये भी अक्सर देखने को मिलता है डंगवाल जी कि जो हमारी ये बंद गोभी है इसमें एक रोग जो है जिसे हम माहू या फिर एफिड कीट कहते हैं, इससे इसको बचाना पड़ता है। तो इसके लिए भी आप पहले से तैयारी करते हैं, बीज रोपण से पहले बीज शोधन करते हैं या क्या करते हैं?
1: सर, हम इसके लिए जैसे पौधों को हम खेत में जिसमें रोपण करते हैं तो उसमें उस समय एक वो दवा, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, शायद थायराम बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो उससे हम को एक पानी में घोल के उसमें एक बर्तन में उसका घोल बनाते हैं, तो उसमें उन पौधों की जड़ों को डुबा के रोपण किया करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जड़ गलन वाला रोग होता है तो वो पौधों को प्रभावित नहीं करता सर, तो उससे काफी मतलब पौधों का जो नुकसान होता था हमारा वो रुक जाता है।
0: रुक जाता है
1: जी जी जी।
0: बहुत बढ़िया डंगवाल जी, खाद और सिंचाई की क्या व्यवस्था है आपके वहाँ पर?
1: खाद सर, हम ये कंपोस्ट जो हमारा पशुपालन करते हैं तो उसमें जो हमारा जो कंपोस्ट बनता है, जो उनका बिछावन है, उससे जो सड़ी हुई खाद होती है तो उसी का प्रयोग करते हैं उन खेतों में। और सिंचाई, क्योंकि हमारा असिंचित क्षेत्र है तो वर्षा आधारित ही खेती होती है सर।
0: और खाद के लिए आप जो आपका जो बिछावन होता है गाय का भैंस का,
1: जी
0: उसका
1: जी
0: प्रयोग करते हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, जैविक खेती आप करते हैं या फिर अन्य तरीके की जो रासायनिक खाद है उसका भी आप प्रयोग करते हैं?
1: सर, हम पूर्ण रूप से जैविक तो उसको नहीं कह सकते, क्योंकि जैविक आज की जो वैश्विक हम एक परिदृश्य कहें तो उसमें जैविक खेती का होना तो असंभव है, क्योंकि उदाहरण के लिए हमारे ढालू खेत होते हैं, ढालदार खेत,
0: जी,
1: तो हम यदि जैविक खेती करें तो हम जैसे ऊपर के खेत वाला कोई अगर रासायनिक उर्वरकों का अगर प्रयोग कर रहा है तो वो बह के नीचे आना है, तो जैविक खेती हम उसको नहीं कर सकते सर। लेकिन जहाँ तक कोशिश होती है कि जैविक ही खेती क्या करते हैं हम, बहुत ही अल्प मात्रा में हम ये उर्वरक का प्रयोग भी करते हैं, मतलब
0: कम मात्रा में आप उर्वरक का प्रयोग करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल,
0: वैसे
1: बहुत कम
0: भी
1: मात्रा।
0: हमारी जो सरकार है वो ये उत्तराखंड प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है, ले जा रही है आगे, है ना? तो किसान भी अगर इसमें सहयोग करे तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा डंगवाल जी, जो राज सहायता की अगर हम बात करें, सरकार विभिन्न क्षेत्रों में फल उत्पादन के लिए और एप्पल मिशन जिसको कहते हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको संचालन कर रही है, आपने भी किसी प्रकार की राज सहायता प्राप्त की है सरकार से?
1: सर, किसी प्रकार की राज सहायता प्राप्त नहीं कर रही है सर, अपने ही जो सीमित संसाधन है उसमें ही हम इन फल और सब्जियों का उत्पादन किया करते हैं। तो राज सहायता के तौर पर अगर हम कहें तो पिछले दिनों हमारे क्षेत्र में फलदार वृक्षों का वितरण किया गया था
0: जी,
1: तो उनकी रोपाई कर रखी है, उसमें से काफी पौधे तो उस समय क्योंकि गर्मी पड़ी थी तो सूख गए हैं, तो कुछ पौधे अभी मैं हाल में देख रहा था अंकुरित हो रहे हैं, मतलब।
0: तो मतलब सरकार द्वारा आपको जो विशेष योजना के द्वारा फल पौध वितरित किए गए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक योजना है, आपको इसका लाभ मिलता है?
1: असल में मैं जो पिछले 14 मार्च को हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उससे पहले लगभग एक वर्ष पहले तक उनके निधन से, तो तब तक पिताजी को मिलता था किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये संचालित है, वो रिन्यूअल भी नहीं करा पाए क्योंकि के मतलब वो सिग्नेचर वगैरह नहीं कर पाए थे उसमें असमर्थ थे, तो हमने रिन्यूअल भी नहीं किया, तो उसका लाभ पिताजी लेते थे हमारे।
0: तो अब तो आप अपनी जमीन अपने नाम में करा करके उसका लाभ ले सकते हैं भविष्य में?
1: जी जी।
0: और जिससे आपको पौध के लिए जो आप खाद है, रासायनिक है और बीज है वो आप खरीद सकते हैं?
1: जी जी।
0: तो डंगवाल जी, जो युवा यहाँ से बाहर पलायन करके गए हैं और एक आस जो है वो लेकर के घर आते हैं कि यहाँ पर क्या काम किया जाए, तो कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो फल उत्पादन और कृषि के साथ जुड़कर ही हम अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकते हैं और कृषि के साथ ही रह करके हम इस उत्तराखंड प्रदेश को भी आगे ले जा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: जो यहाँ से पलायन करके, जैसे हमारा जो क्षेत्र है हम काफी सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं, क्योंकि हम जब दूर दूर कहीं इधर उधर भ्रमण में जाते हैं तो देखते हैं, खासकर हमारा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का ये क्षेत्र जो जनसंख्या विहीन लगभग ऐसा हो गया है, तो हमारा जो ये क्षेत्र है जहाँ के हम मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर अपने अल्प ज्ञान से मैं कहूँ तो जो ये बागवानी है, हमें बागवानी हमको यहाँ से जो पलायन से रोकने में बहुत हद तक सहायक है हमारे क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ।
0: जी
1: क्योंकि आज की जो एक सामाजिक स्थिति कहें तो पैसा तो बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं तो हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ से पलायन तेजी के साथ हो रहा है, अगर सर

0: सरकार भी प्रयास करे अपनी ओर से, और अगर जो वहाँ के जो पलायन करके जा रहे हैं अगर उनकी भी इच्छा शक्ति काम करे तो बिल्कुल हो सकता है। अगर ये जो बंदर और सोरों का आतंक हमारे क्षेत्र में विशेष तौर पर हो रहा है, तो अगर चकबंदी की योजना लागू कर दी जाए और अच्छा एक तार बाड़ का प्रबंध अगर किसान के हित में किया जाए, तो तब हमारा ये पलायन रुक सकता है हमारे क्षेत्रों से।
1: निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बात की डंगवाल जी, और
0: जी
1: निश्चित ही जो श्रोता सुन रहे हैं और जो इच्छा शक्ति अपनी बना रहे हैं कि हम इस काम को करेंगे, कृषि को करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए ये प्रयास जो है, आपकी बातें जो है उनके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। इसी आशा के साथ आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डंगवाल जी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।
2: सदा अल्लाह पुल सुनो बागवानी दगे सब्जी उत्पादन पर यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता श्रीमान तारा सिंह डंगवाल दगे, और हम हर रोज आपके कार्यक्रम में आजक सलाह बतनू। तो आजक सलाह हमारे कृषक बंधुन के ये रोल कि हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में टमाटरक जो पौध छन वो नर्सरी बटी हटे भी रब किसान भाई बहनी अपन खेतन में उन्हें रोपण कर हनल, तो उसमें हमन के टमाटर पौध में भल उत्पादनक लीजिए हमन के अपन बढ़ते हुए टमाटर पौध में स्केटिंग जो छू अवश्य करन चाहिए, ताकि उमें जो उत्पादन छ वो भल हो, क्योंकि कि स्केटिंग करने के बाद जो एक उत्पादन क्षमता छ वो थोड़ा बहुत बढ़ जाए। तो कार्यक्रम में अब अगले आपको सुनू रमेश जोशी गई हो कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, रमेश जोशी का ये कुमाऊनी लोकगीत तकदगढ़ हमार आज ग्राम जगत कार्यक्रम इत्य के संपन्न हूँ। भूला पुदगे फिर भेंट हो ले लापुण दगड़ी कृष्णा लटवाल के दियो अनुमति। नमस्कार।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का दगड़ मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल केदारनाथ धाम में नई सुविधाओं वाले अस्पताल का लोकार्पण करो। कृषि मंत्री गणेश जोशील कोय असमक चाह उद्योगों का अनुभवों और नई तकनीकों का अध्ययन कर वीर उत्तराखंड में ले चाह उत्पादन को नई दिशा देने काम करी जल। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन भय सख्त, कचरा फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करी जल। और आकाशवाणी स्थापना के 90 साल पूर्ण होने के मौके में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वॉकथॉन का आयोजन। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज केदारनाथ धाम में नई सुविधाओं वाले अस्पताल का लोकार्पण करो। यह अस्पताल को स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा चलाई जल। यह मौके में मुख्यमंत्री को कि विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाले उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती दल। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के दगड़ दगड़ वहां रोने वाले महसों के लिए बहुत फायदेमंद होल। मुख्यमंत्री को कि राज्य सरकार केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष प्राथमिकता देने, जैल यात्री श्रद्धालुओं को कैल तरह की परेशानी सामना नहीं करना पड़ल।
1: ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड के इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। इस विस्तार के बाद केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, स्थानीय निवासियों को आपातकाल में ये संजीवनी का कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जैसे संस्थान हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के विकल्प संकल्प को साकार

0: करने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं।
1: कृषि मंत्री गणेश जोशी इनुदिना असमक दौर पर छिन उनुल असमक बारफा थारक चाह बगानों फेर करो वहां उत्पादन क्षमता प्रसंस्करण प्रणाली और विपणन व्यवस्था और जानकारों दगड़ बैठक कर वेर उत्तराखंड में चाह उत्पादन को बढ़ावा देण गुणवत्ता सुधार और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनूणक बार में सुझाव ले। कृषि मंत्री कहे कि उत्तराखंड में चाह उत्पादनक लीजी अपार संभावनाएं छिन और राज्यक जलवायु भल गुणों वाल चाहक लीजी अनुकूल छू। उन्होंने कहा कि असमक चाह उद्योगक अनुभवों और नई तकनीकों का अध्ययन कर उत्तराखंड में चाह उत्पादन को नई दिशा देने काम करी जल जल उत्तराखंडक चाह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पछाण दिलाने के लिए प्रभावी विपणन रणनीति तैयार करी जल वे किसानों को ले फायद होल। विश्व रेडक्रॉस दिवसक मौके में आज बागेश्वर जिला कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन करी गए। यह दौरान समाज सेवा और भल का अलग अलग क्षेत्रों में भल काम करने वाले मैसों को सम्मानित करी गए। जिलाधिकारी आकांक्षा कौंडेल बागेश्वर रेडक्रॉस द्वारा करे जाने वाले सेवा काम की सराहना करी। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवियों की निस्वार्थ सेवा भावना समाज में सकारात्मक बदलाव लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभून।
2: आज विश्व रेडक्रॉस दिवस में हम लोगों ने सम्मान समारोह जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। जो हमारी बागेश्वर जिले की सोसाइटी है बहुत ही अच्छा काम कर रही है और कोई भी चाहे आपदा हो या कोई भी ऐसे समस्या हो उसमें हमारे रेडक्रॉस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत एक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और कभी कभी देखा गया दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। चाहे इसके पहले हमारी पौशारी की आपदा हो या इसके अलावा और भी कोई आपदा आई हो तो उसमें अच्छा काम किया है जिन लोगों ने उनको हमने सम्मान किया है। कुछ हमारे दिव्यांगजन हैं उनको भी हम लोगों ने सम्मान किया है। कुछ हमारी महिलाएं जो इस सोसाइटी से जुड़ी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको भी सम्मान किया गया है और आशा है इसी एक्टिविज्म के साथ इसी तरह सक्रियता के साथ हमारी जो सोसाइटी है वो आगे भी काम करती रहे।
1: रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाणेल कोई की यो संस्था स्वयंसेवी लगातार मानव पीड़ा को कम करने के उद्देश्य समर्पित भावल काम करणी और भविष्य में ले यो सेवा काम यसे रोल।
3: आज हमारे द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा जो समाज सेवा के लिए लगातार अच्छा कार्य जिनके द्वारा किया गया उनको आज सम्मानित किया गया और जिलाधिकारी महोदय ने भी बागेश्वर रेडक्रॉस की काफी सराहना की और काफी हमारे कार्यो को सराहा। और जब अधिकारी इस प्रकार से अपना अमूल्य समय देते हैं और कार्यो को सराहते हैं तो अवश्य हमारे सदस्यों और कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन होगा और वो दुगनी गति से और दुगनी मेहनत से काम करेंगे।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह का दगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: रुद्रप्रयाग जिला प्रशासनल केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़े है। जिलाधिकारी विशाल मिश्राल कोई की यात्रा वाल बाटों में गाड़ गद्यार नदी और पहाड़ियों में कचरा करण वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करी जाए। प्रशासन अनुसार यात्रा के बाटों में सफाई बने धरना के लीजिए 400 से ज्यादा सफाई कर्मी सीतापुर बटी केदारनाथ धाम तक लगातार सफाई अभियान चलुणी। यकले गौरीकुंड क्षेत्र में 110 कर्मियों की तैनाती करी छू। सोनप्रयाग में प्लास्टिक कचरा कम करण के लिए विशेष मशीन लगाई छिन। प्रशासनल 600 है जद कूड़ेदान लगे रखिन और पर्यावरण मित्रों की तैनाती करवे नियमित सफाई और कचरा संग्रहण व्यवस्था करी जाने। उखी मठक उप जिलाधिकारी अनिल रावतल श्रद्धालुओं से प्लास्टिक और कूड़ा को कूड़ेदान में डालने का अनुरोध करो।
5: सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से लगभग 400 के आसपास कार्मिकों को स्वच्छता और सफाई के लिए लगाया गया है जिनमें से मात्र गौरीकुंड में ही 110 कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। साथ ही शौचालय यात्रा मार्ग की सफाई और अन्य कार्यों का संपादन किया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम पधारने वाले सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने कूड़े का समुचित निस्तारण करने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और जिला प्रशासन को स्वच्छता और सफाई के दृष्टिगत अपना आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
1: वे केदारनाथ यात्रा में ओणीवाल श्रद्धालु ले सफाई व्यवस्था को लेवे जिला प्रशासन एक सराहना करणी।
6: यहाँ पर जो टॉयलेट की सुविधा है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सफाई हो रही है और सब काम बहुत सुचारू रूप से हो रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सफाई मिलेगा, पर बहुत अच्छा है।

0: आकाशवाणी स्थापना 90 साल पूर्व होणक मौक में आज राती आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादूनल केंद्र बटी नेहरू कॉलोनी तक वाकथानक आयोजन करो। यो मौक में आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों खुशी खुशी भाग ली। बहुजन हिताय बहुजन सुखायक आदर्श वाक्यक दगड़ आकाशवाणी स्थापना साल 1936 में है छी। यो देशक सबूह है विश्वास वाल प्रसारणक माध्यम छू और अलग अलग भाषाओं में समाचार बुलेटिनक अलावा संगीत मनोरंजन अर्जन उपयोगी कार्यक्रमक प्रसारण करू। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यल आज अल्मोड़ जिले में अल्मोड़ जिलाक हुकम सिंह बोरा राजकीय स्नातोत्तर महाविद्यालय सोमेश्वर में आयोजित वार्षिकोत्सव में शामिल है। यह मौक में उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के भीतर छात्रवृत्ति पाणवाल मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देवे सम्मानित करो। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र छात्राओं की सूची में छात्राओं को लगातार बढ़ने संख्या शिक्षा क्षेत्र में चेलियों को लगातार अखिल बढ़ना प्रमाण छू। श्रीमती आर्यल कौ की प्रदेश सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य अलग अलग योजनाएं संचालित करना। रुद्रप्रयाग जिलाक अगस्तमुनि क्षेत्र में एक बारी फिर बाल विवाह मामला सामले में आई छू। प्रशासन और संबंधित विभागक तत्परता एक नाबालिग चेलीक भविष्य बचाई गई। मिली जानकारी के अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 में बाल विवाहक सूचना मिलन पर प्रशासनक टीम आज राती डांगी पाटालीधार गांव में पहुंची, जहां एक नाबालिग चेलीक टिक पिठा होने छी। वे द्वीय पक्षों को बाल विवाह निषेध कानूनक जानकारी दे और सलाह के बाद द्वीय पक्षों सहमति जताई और चेलीक 18 साल पूर्ण होने के बाद टिक पिठा और ब्याह करी जाल। फिलहाल यह काम टाली गई। आखिर में मुख्य समाचार एक बारी फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल केदारनाथ धाम में नई सुविधाओं वाले अस्पताल का लोकार्पण करो। कृषि मंत्री गणेश जोशी कहे कि असमक चाह उद्योगक अनुभवों और नई तकनीकों का अध्ययन करवे उत्तराखंड में ले चाह उत्पादन को नई दिशा देने काम करी जल। केदारनाथ धामक दौरान स्वच्छता व्यवस्था को लेवे रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त, कचरा फैलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जल। और आकाशवाणी स्थापना 90 साल पूर्व होने के मौके में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वाकथानक आयोजन। एकादगढ़ कुमाऊनी में समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:40 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। आज की फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आप तो ऐसे न थे फिल्म के गीत के साथ। गीत को आवाज दे रहे हैं हिमलता, गीत लिखा है निदा फाजली ने और इस गीत की धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: मार्केट के बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो?
1: नहीं तो पूछे,
2: मार्केट ट्रेंड है।
1: सुनने में आया कि
3: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो।
2: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
2: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो।
5: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
6: सॉरी,
7: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है।
6: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
7: मतलब
6: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं तीन देवियां फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई है SD बर्मन ने।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric. Nexa.
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 100.8 MHz पर. हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं. रात्रि के 8 बजे हैं. लीजिए पेश है मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस.

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर देख
3: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: अरे मार्केट ट्रेंड देखा
9: हा?
8: हाँ क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी
9: सॉरी
8: सुन नहीं रहा है क्या परफॉर्मेंस की बात हो रही है
9: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है
8: मतलब
9: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
10: आइए सबरस प्रोग्राम के समापन में आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की गाई ये गजल

गुलाम मलिक की इसी गज़ल के साथ आज का सबरस प्रोग्राम आप यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। तो श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो आज का दिन बेहद अच्छा है भारत के लिए, और अच्छा ही रहता है अगर स्पोर्ट्स खेल जगत में हम अगर देखें तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तो आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत की महिला फुटबॉल टीम ने AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर हासिल की, और आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में मैराथन का आयोजन किया। तो शुरुआत करते हैं हम आईपीएल क्रिकेट से, जो कि दिल्ली में ही चल रहा है, और दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अभी मुकाबला जारी है। अगर ताजा हालात देखें तो 13 ओवर चल रहा है, 5 विकेट गिर चुके हैं, दिल्ली 91 रन बनाई हुई अभी तक, और अंक तालिका में देखें तो दिल्ली 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। दोनों ही टीम के पास हार की कोई गुंजाइश नहीं है।
2: मुझे लगता है कि जीतना भी जो है वो प्लेइंग फॉर प्राइड वाला मामला है एक तरह से, क्योंकि प्लेऑफ मैथमेटिकली आप किसी टीम को बाहर नहीं बोल सकते हैं, पर प्लेऑफ की दौड़ से एक तरह से बाहर ही हैं दोनों ही टीमें। पर डीसी के लिए शायद थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि घर पे खेल रही हैं और चाहेंगी कि घर पे कम से कम एक जीत दर्ज करें, पर जिस तरह से इस साल का पूरा IPL गया है दोनों ही टीमों के लिए, मुझे लगता है कि जीतना जो है, जैसा मैंने कहा, वो प्लेइंग फॉर प्राइड वाली चीज है और उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ एट स्टेक नहीं है। हाँ, हमारे चीफ कोच साहब जरूर मैच देख रहे हैं तो उनको इम्प्रेस करने की जरूर एक कोशिश हो सकती है कुछ भारतीय खिलाड़ियों की आने वाले कुछ समय में भारत की टीम में अपने अलग अलग फॉर्मेट्स में, स्पेशली T20 में अपनी दावेदारी पेश करने का।
0: बिल्कुल, और अगर आज कोई भी टीम हारती है तो फिर

0: नॉकआउट में नहीं जा पाएगी। और कल के मुकाबले में देखिए तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। पूरे मैच का हाल जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की शुरुआत शानदार रही। बारिश से प्रभावित मुकाबला डकवर्थ लुइस के चलते 19-19 ओवर का कर दिया गया। एलएसजी ने 3 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 209 रन लगाए। मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में 111 रन की शानदार पारी खेली। डीएलएस के तहत मिले 213 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जैकब बैथल और विराट कोहली दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। बीच के ओवरों में देवदत्त पडिकल और कप्तान रजत पाटीदार ने मोर्चा संभाला। पडिकल ने 34, वहीं रजत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 61 रन की दमदार पारी खेली। अंतिम ओवरों में टिम डेविड ने 17 गेंदों में 40 जबकि कृणाल पांड्या ने 16 गेंदों में 28 रन बनाए पर टीम को जीत नहीं दिला सके। गेंदबाजी में एलएसजी की ओर से प्रिंस यादव ने 3 विकेट चटकाए। मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: 9 विकेट कह दिया था हमने, माफ कीजिएगा, 9 रन से हराया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो कल का मैच बेहद रोमांचक रहा, भले ही बारिश ने खलल डाली।
2: उस खलल की वजह से मुझे लगता है एलएसजी को फायदा भी हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैच जितना देर से जाता है उतना जो स्टार्ट स्टॉप मैचेस होते हैं वो सबसे ज्यादा किसी भी खिलाड़ी के लिए, पब्लिक के लिए तो होता ही है, दर्शकों के लिए, पर खिलाड़ी के लिए भी बहुत इरिटेटिंग होता है कि आप खेलने उतरते हैं, थोड़ा सा वार्म अप होते हैं, तैयार होते हैं और आधा 15-20 मिनट आप खेलते हैं, फिर बारिश आ जाती है और वो बारिश भी ऐसी होती है जो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए मैच रोकती है। तो आप 8 बजे खेलते हैं, फिर आपका मैच रुक जाता है, फिर 9 बजे शुरू होता है, फिर आप कुछ ओवर खेलते हैं, फिर 10 बजे शुरू होता है, मैच रुक जाता है, तो किसी भी टीम के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, जो टीम चेस कर रही है उसके लिए भी चीजें मुश्किल होती चली जाती हैं, बारिश की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, कंडीशंस की वजह से, टाइम की वजह से, हर चीज की वजह से। उसके बावजूद जिस तरह की शुरुआत आरसीबी को मिली थी, बहुत तेजी से उनके पहले 2-3 विकेट निकल गए थे, तो उसके बाद आपने 203 के आसपास 203 का टोटल खड़ा करना, वो भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात थी आरसीबी के लिए। और जो डीएलएस की बात अक्सर होती है कि एक फॉर्मूला जरूर है लेकिन आज तक किसी को समझ आया नहीं है, 209 एलएसजी ने बनाए थे लेकिन क्योंकि आधा मैच उन्होंने 20 ओवर के हिसाब से खेला था और बाकी आधा जो है वो 19 ओवर के हिसाब से हुआ था, तो जो फाइनल टारगेट था वो उनके टोटल से भी 4 रन एक्स्ट्रा था, 213 का मिला था उनको। तो ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करती हैं। फिर भी अगर, जैसे मैंने कहा, अगर ऊपर के आपके 2-3 जो बल्लेबाज हैं वो अगर 5-5, 10-10 रन भी और बना लेते या थोड़ा सा बेटर कर जाते, जिसमें सबसे बड़ा विकेट जो था वो शायद विराट कोहली का ही था, क्योंकि अगर वो रहते तो इतना लंबा नहीं जाता, वो पहले मैच खत्म भी कर सकते हैं, उनमें इतनी है ताकत, इतनी क्षमता है उनकी। तो बहुत ही दिलचस्प मैच था लेकिन दोनों ही टीमों के लिए, हालांकि एलएसजी बहुत खुश होगी कि बिल्कुल लास्ट चल रही थी तो 2 पॉइंट जो मिले वो बहुत जरूरी थे उनके लिए, और वो भी घर पे खेलते हुए, कि एकाना पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस साल बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, पर टीमों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग जरूर होता है जब ऐसे कंडीशंस में आपको परफॉर्म करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, पहली बार लखनऊ ने अपने घरेलू सरजमी पर जीत भी हासिल की है, तो अब पूरा का पूरा आईपीएल ही इस बार काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है।
2: जी,
0: अब बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप की। चीन के शंघाई में चल रहा है दूसरे चरण का मैच है। रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पदक की उम्मीदें बरकरार रखी है। सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, वहीं साहिल जाधव ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिमरनजीत ने चीनी ताइपे के फोंग यू झू को 6-0 से हराया, जबकि साहिल ने रोमांचक शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराकर कंपाउंड स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो अगर हम देखें कि पूरा का पूरा, ये जो हमारा पारंपरिक रूप से भारत की ताकत मानी जाती है तीरंदाजी, और इसमें जब पुरुष महिला और मिश्रित यानी कि मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में भारत पोडियम पर जगह बनाने में नाकाम रहा था, तो लेकिन जब टीम स्पर्धाओं में मिली इस हार के बाद जिस तरीके से व्यक्तिगत स्पर्धा में हमारे इन खिलाड़ियों ने भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है,
2: उससे बड़ी बात, ज्यादा अच्छी चीज ये है कि जो नाम हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनकी जगह जो यंगस्टर्स हैं

0: जो पिछले कुछ समय में ही जिन्होंने भारत के लिए खेलना शुरू किया है, जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब चाहे वो तरुणदीप राय हों या धीरज भी यंग ही है लेकिन एक्सपीरियंस उनको हो चुका है, या दीपिका कुमारी हों, ये बहुत सालों से भारत के लिए खेल रहे हैं, और इनके इनके टैलेंट पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई शक नहीं है, पर हमें अब आगे देखना चाहिए, हम पीछे देखते हुए नहीं चल सकते हैं, और यहाँ पे भी जो सिमरनजीत है वो सिर्फ 3 पॉइंट से क्वालिफाइंग में दीपिका से पीछे रह गई थी टीम में आने से, तो इंडिविजुअल में उन्होंने प्रूव किया कि वो भारत का भविष्य है आर्चरी के हिसाब से, और वो मुझे लगता है क्योंकि इस साल आगे अभी हमारे पास एशियन गेम्स भी है जो बहुत जो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और जो वर्ल्ड कप फाइनल्स होते हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होते हैं वहां पे इतना आसान नहीं होगा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि जस्ट कि शूटिंग या वर्ल्ड कप में शूटिंग या आर्चरी में साल में 4 वर्ल्ड कप हैं, तो हर फेज में जो बाकी की कंट्रीज भी हैं, हमारे भी जो फेडरेशन है वो आपको मिक्स एंड मैच करके ही खिलाती है, ताकि जो बड़े टूर्नामेंट है वहां के लिए आपको अपने बेस्ट खिलाड़ी मिल सके, और वो टेस्ट मुझे लगता है एशियन गेम्स में ही होगा। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उससे चाहे वो साहिल हो या सिमरनजीत हो, उनको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा, पर ये पहली ही सीढ़ी है अभी आगे बढ़ने के लिए, अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है इन लोगों के लिए।
1: बिल्कुल, अभी आपने जिस तरह से नाम लिया धीरज का और या फिर बाकी दीपिका का, तो इन खिलाड़ियों से हमें काफी उम्मीदें थी और ये आगे नहीं बढ़ पाई, और उसके बाद हमें ये नए यंगस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहते हैं ना कि खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है, और ये हमें देखने को भी मिला है, भले उनसे उम्मीदें नहीं थी लेकिन ये हमारे भविष्य बनकर उभरे हैं। तो बता दें कि सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की विश्व नंबर 1 की खिलाड़ी कोंग चेओंग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिरार्ड का सामना करेंगे, और दोनों ही खिलाड़ियों के लिए ये चुनौती काफी भारी रहेगी।
0: आसान बिल्कुल नहीं होगा, खासकर कि सिमरनजीत के लिए, क्योंकि कोरिया का एक तरह से राष्ट्रीय खेल है आर्चरी, वहां पे प्राइमरी स्कूल से आप शुरू कर देते हैं और बहुत सीरियसली लिया जाता है, और टीम इवेंट में कोरिया भारत से जिस तरह से हारी है महिलाओं से, कहीं ना कहीं उनको भी ये प्रूव करना होगा कि वो जो हार थी वो एक फ्लूक हार थी, क्योंकि वो बहुत सीरियसली लेते हैं आर्चरी को, जैसा मैंने कहा, तो आसान बिल्कुल नहीं होगा। और कंपाउंड में भारत की जो भारत के तीरंदाज हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, पर फ्रांस हमें भूलना चाहिए कि कंपाउंड में अच्छी बहुत स्ट्रांग टीम है, फ्रांस को लाइटली लेना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा वहां पे।
1: बिल्कुल, दोनों ही के सामने चुनौतियां भले ही मुश्किल है लेकिन दोनों ही विश्व कप में अपना पहला पदक जीतने से सिर्फ एक जीत ही दूर है। और हम तीरंदाज की बात कर रहे हैं तो निशानेबाजी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल ने हरियाणा के रोहित कन्यान की कड़ी चुनौती को पार करते हुए भोपाल में आयोजित कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भले ही ये हमारा घरेलू मैच हो, घरेलू टूर्नामेंट हो, फिर भी हमारे खिलाड़ी हैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे अपने पारंपरिक खेलों में।
0: ये घरेलू जरूर है लेकिन सुरेंद्र सिंह जो कंपटीशन है वो बहुत ही प्रेस्टीजियस माना जाता है। कुछ ऐसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं जो जहां पे परफॉर्म करना और जहां पे अच्छा प्रदर्शन करना एक प्रेस्टीज की बात मानी जाती है, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत मजबूत होता है, बहुत और नए खिलाड़ी बहुत निकल के आते हैं, जिसमें सुरेंद्र सिंह मेमोरियल है और मावलांकर टूर्नामेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और रुद्रांश की जहां तक बात है, कहीं ना कहीं उनके अंदर पेरिस के लिए क्वालिफाई ना कर पाने की जो टीस है, जो उनको नहीं जगह मिल पाई थी, वो बहुत उनको अभी भी अंदर से चुभ रही होगी, तो वो चीज उसकी, इसीलिए अगर पिछले 2 साल में आप देखें तो उन्होंने लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उम्मीद यही है कि इसी को आगे लेके चलेंगे और एशियन गेम्स में हमें उनसे और पदक की उम्मीद रखेंगे।
1: बिल्कुल। उधर भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के सूझो में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की, और भारत का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना तब पक्का हो गया जब फिलीपींस और चीनी ताइपे अपने आखिरी ग्रुप सी मैच को 12 या उससे ज्यादा गोल के अंतर से जीतने में नाकाम रहे। तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है भारतीय महिला टीम ने, पहली बार इस टूर्नामेंट के, इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह।

0: बनाकर।
1: बिल्कुल, मैं लगातार ये कहती रही हूँ कि अगर हम फुटबॉल की बात करें तो भले ही जो पुरुष फुटबॉल है वो ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा उसके बारे में लोग जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो भारत में हो या विश्व लेवल पे भी हो, पर अगर हम इंडियन फुटबॉल की बात करें तो हमारा जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाए तो हमें अपनी महिला टीम से ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए और उनको और ज्यादा एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन है हर, चाहे वो एज ग्रुप में हो या सीनियर लेवल पे भी हो, जिस तरह से हमारी महिला फुटबॉल टीम ने प्रदर्शन किया है, चाहे वो रिजल्ट उनके फेवर में उतना नहीं भी आया हो, पर जो उनका प्रदर्शन है मजबूत टीमों के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास दिलाता है कि अगर उनको उतनी ही सुविधाएं मिले, उतना ही एक्सपोजर मिले और उतनी ही उनको एनकरेजमेंट मिले, तो वो मैं आज भी अब भी ये मानती हूँ कि महिला टीम जो है वो पुरुषों से पहले वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना पाएगी। हमारे देश में उतना नहीं है, पर जो खिलाड़ियों का है, अगर आपको याद हो तो जो सीनियर एशिया कप भी हुआ था कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, उसमें मलीशा कल्याण का एक गोल था जो दुनिया भर में वायरल हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं पता चला। अगर उस ऐसी चीजें और ज्यादा पॉपुलराइज की जाएंगी तो मुझे लगता है महिला टीम को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।
0: बिल्कुल, और अगर इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाती है भारतीय टीम तो 2026 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भी भारत का स्थान पक्का हो जाएगा। और अब बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो हम आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं और बता देना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष में आयोजित समारोह के एक हिस्से के रूप में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। और इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि भविष्य में भी आकाशवाणी की आवाज गूंजती रहेंगी, बिल्कुल गूंजती रहेंगी, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ अपना ये जो सफर है वो जारी रहेगा। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
3: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
2: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे

0: बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आत्काल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है।

0: यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और

0: पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इंद्रधनुष कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म के गीत के साथ। गीत को आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: पीछे
1: मार्केट ट्रेंड देख
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
2: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
3: देवी जी की सुनो
4: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
6: इंस्पिरेशन बिल्ड इनटू एवरी अराइवल दिस मे ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज
7: मीट द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स द एसयूवी दैट्स बिग ऑन स्टाइल एंड स्मार्ट ऑन वैल्यू विद इट्स बोल्ड डिजाइन एंड स्पेशियस कंफर्ट इट्स बिल्ट टू इंप्रेस एवरी सिंगल डे
6: एंड नाउ इट्स योर्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ जस्ट ₹6.70 lakh
7: यस ₹6.70 lakh वैलिड टिल 31st May डोंट मिस आउट विजिट योर नियरेस्ट नेक्सा showroom and bring home your prongs today.
6: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
8: इंद्रधनुष कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया जख्मी फिल्म का गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई है बप्पी लहरी ने

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for Rs. 10.99 lakh with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
4: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी.
5: सॉरी,
4: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है.
5: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है.
4: मतलब
5: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ. म्यूचुअल फंड्स सही है.
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.
7: आइए इंद्रधनुष कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं संजोग फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में.

संजोग फिल्म का गीत अभी आपने सुना है। इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 में लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

फरमाइशी फिल्म गीतों के इस सफ़र में हाजिर है आपका दोस्त भास्कर शाह। सभी सुनने वाले हमारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता मित्रों, बहुत ढेरों फरमाइशें हम तक पहुंची हैं और सभी फरमाइशें हम तक पहुंची हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। अगर आप भी अपने फरमाइश के फिल्मी नगमे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 इस नंबर पर मैसेज भेजकर अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी इन प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज की जो पहली फरमाइश हमें भेजी है वो हमें भेजी है आदर्श नगर मलोड पंजाब से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मेहंदी, सौरभ, साइना और निवांश शर्मा ने। आप सभी सुनना चाहते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है समीर ने और इस गीत की धुन बनाई है नदीम और श्रवण ने। तो बहुत खूबसूरत से गीत की आपने हमसे फरमाइश की है तो हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी फरमाइश आप तक पहुंचा रहे हैं। लीजिए पेश है आपकी फरमाइश पर मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत।

0: मल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 और टोटल बेनिफिट्स अप टू 80,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएस अप्लाई।
1: आइए शामिल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में अगली फरमाइश जो हमें भेजी है। पुष्कर बिष्ट ग्राम पलना ब्लॉक लमगड़ा जिला अल्मोड़ा से आपने लिखा है कि आप हमें किशोरदा का कोई भी गाना सुना दीजिए। तो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार साहब का बहुत खूबसूरत सा गीत है और उस फिल्म का नाम है कलाकार। आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार, गीत लिखा है हिंदी भर ने और इस गीत की धुन बनाई है बप्पी लहरी ने। तो लीजिए आपकी फरमाइश पर पेश है कलाकार फिल्म का ये गीत।

कलाकार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम की आखिरी फरमाइश, जो हमें भेजी है दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। आप सभी सुनना चाहते हैं तेजाब फिल्म का गीत अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो लीजिए, आप सभी श्रोता मित्रों की फरमाइश पर पेश है आज के प्रोग्राम की ये आखिरी फरमाइश, और उस फरमाइश का नाम है तेजाब फिल्म का ये गीत।

अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल के गाए तेजाब फिल्म के सी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अब यहीं पर संपन्न होता है। अगले शुक्रवार को ठीक रात्रि 9:30 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र भास्कर शाह को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत।

आज के सुगम संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं नुसरत फतेह अली खां और मुजाहिद मुबारक अली खां की गाई इस कव्वाली के साथ।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 और टोटल बेनिफिट्स अप टू 80,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं नसीर अहमद नासिर का कलाम। फनकार हैं गुलाम अली।

गुलाम अली की गाइस गज़ल के बाद आज के सुगम संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं बशीर बद्र का कलाम। फनकार हैं तलत अजीज़।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं गीत गाया पत्थरों ने फिल्म के गीत के साथ। गीत को आवाज दे रहे हैं आशा भोसले, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई है रामलाल ने।

गीत गाया पत्थरों ने। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया काला बाजार फिल्म का गीत। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और इस गीत की धुन बनाई है SD बर्मन ने।

काला बाजार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आखिरी खत फिल्म का गीत। गीत लिखा है कैफी आजमी ने और इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

आखिरी खत फिल्म का गीत अभी आपने सुना फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीता मेरा नाम फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

गीता मेरा नाम। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं चोर मचाए शोर फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

चोर मचाए शोर। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं गजल फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और इस गीत की धुन बनाई है मदन मोहन ने।

मोहम्मद रफ़ी का गाया गज़ल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया जब प्यार किसी से होता है फिल्म का गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: जब प्यार किसी से होता है। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले के जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by